0: Maika.
1: Mirchi.
2: R-O-C-H-I-E.
0: Roshi, Roshi.
1: Mirchi, Roshi.
3: Only on Radio Mirchi, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
4: ऑनलाइन लव टेस्ट छोड़ो, द रियल लव टेस्ट इज राइट हियर। आई हैव फिगर्ड इट ऑल आउट। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है और आपका बॉयफ्रेंड आपके सामने बैठकर गैंग्स ऑफ वसेपुर पार्ट वन, गैंग्स ऑफ वसेपुर पार्ट टू, बदलापुर, मॉनसून शूट आउट, न्यूटन, ऐसी फिल्मों के बारे में बात किए जा रहा है और फिर भी आपका मन नहीं कर रहा कि आप उसकी नस ढूंढे, उसे प्यार से डायगनली काटे और जोर जोर से हंसे, then that means you're in love. It is true. क्योंकि जब मुझे भूख लगी होती है ना, I get all forms of hangry. और मेरे hangry mood में मैं किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करती कि मैं उसकी बकवास tolerate कर सकूं. अगर आप hangry इंसान हो और फिर भी बकवास tolerate कर रहे हो, यही तो है प्यार की निशानी. और अगर हो गया है प्यार, तो don't you think मेरे यार, हमें इसके बारे में convo करनी चाहिए. And to do that, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर, लेट्स गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है R-O-C-H-I-E. एंड व्हाइल यू फाइंड मी ऑन योर सोशल्स, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
5: कुड़ी

0: Candy.
1: Musical doctors.
2: Mirchi.
3: Iskabana, puskabana, sakabana.
4: Rambala.
3: Murga, murga. Navid wala murga.
4: Mirchi, murga.
5: हेलो
6: हेलो, ये कमलेश जी?
5: हाँ जी, कौन?
6: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
5: कौन से पैसे दिए तुम्हें?
6: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
5: देखिए,
6: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
5: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
6: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए का बहुत बड़ी कीमत जो आप देने को मना कर रहे हो?
5: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या, तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
6: आप नहीं दे रहे फिर?
5: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
6: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
7: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
5: with
7: us?
5: Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
7: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
5: No, not an issue. 750 only?
7: Yes, sir, absolutely.
6: Nah, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam ghejne mein pad gayi.
2: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
4: Yeah, fucker.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपने अपनी बेस्टी को बोला दैट यू कांट डेट हर बिकॉज आपके मन में ऐसे डेटिंग की स्थिति उपस्थित नहीं है, लेकिन द ट्रूथ इज दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर बेस्टी. एंड राइट आफ्टर व्हेन अ हॉट गर्ल प्रपोज्ड यू सेड यस टू हर. शर्म नहीं आती आपको ऐसे गंदे गंदे काम करते हुए?
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: It is time for the secret box. अगर आपके पास है कोई भी secret confession to make, मेरे पास है उसे सुनने के लिए. Non-judgmental कान मेरी जान. So hit me up on Insta या FB. We will get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की spelling है ROCHIE. और मेरे साथ line पर है मेरे mystery caller. Hello, mystery caller.
4: Hi, रोशी.
2: How are you?
4: I'm good. Hi, how are you?
2: मैं तो ठीक हूँ. आप इतने दुखी क्यों sound कर रहे हो? जीवन में सब कुशल मंगल है ना?
4: हाँ, सब कुशल मंगल है, बट एक छोटी सी चीज बतानी थी.
2: हाँ, ऐसे लग भी रहा है कि आपके दिल में बहुत बड़ा भार है, इसे अपने दिल में मत रखो. व्हाट्स योर कन्फेशन, मॉर्निंग ग्लोरी?
4: सो रोशी, द थिंग इज आई एम इन अ रिलेशनशिप और हमारी रिलेशनशिप को 6 महीने हो चुके हैं. बट द थिंग इज, स्टार्टिंग के 3 महीने में ना, मतलब शी केम टू माई प्लेस एंड बहुत अच्छा टाइम जा रहा था. द एक्शन वॉज रियली गुड एंड मतलब बहुत मजा आता था. बट थोड़े टाइम बाद आई सजेस्टेड कि वी शुड हैंग आउट एट योर प्लेस. एंड वो फेज शुरू भी हुआ एंड शी वॉज रियली हैप्पी कि उसको ये लग रहा था कि मैं शायद उसके पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी करना चाह रहा हूँ. उनका एक पेट है टॉमी, उसके साथ भी बॉन्डिंग अच्छी करना चाह रहा हूँ. एंड शी वॉज रियली हैप्पी. बट रोशी, द थिंग इज, जब उसके घर जाके हैंग आउट करो तो उसकी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है. तो मेन मोटिव वॉज कि वहां जाके अगर मेरे को अच्छा 3 टाइम का खाना मिल रहा है तो आई एम मोर देन हैप्पी.
2: अच्छा, 3 टाइम का खाना आपके घर में नहीं मिलता? आपको आपकी मम्मी नहीं देती खाने को?
4: इतनी इज्जत अगर घर में मिलती तो फिर क्यों ही देता? फिर वही बात हो गई ना, घर की मुर्गी दाल बराबर.
2: ये कितने टाइम से ढोंग कर रहे हो आप?
4: 3 महीने हो गए आई थिंक.
2: And what if they find out that आप actually bonding नहीं करना चाहते? You don't care for Tommy कुत्ता. You just like the dinner and the lunch and the breakfast you're getting. फिर क्या होगा?
4: फ्री में अगर खाना मिल रहा है तो कौन खुश नहीं होगा रोशी?
2: I think मैं आपको roshify करना चाहती हूँ सबसे पहले तो.
0: You've been roshified.
2: And secondly, I hope that आपके ये जो girlfriend के मम्मी पापा ये radio at this point in time ना सुन रहे हो.
4: तो I think फिर दोनों घर से खाना बंद हो जाए.
2: And I don't want that to happen to you. All the best. I hope आपका ये झूठ और ढकोसला चलता रहे. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई confession है, then feel free to hit me up on Insta या FB and we will get talking. And whatever you do, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: हम एक क्लब में मिले, वी स्टार्टेड टॉकिंग, हैड अ रियली गुड टाइम, उसके घर गए, वी स्पेंट अ रियली नाइस इंटीमेट टाइम टुगेदर, और अब उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है. ही वॉज सो क्यूट, आई रियली मिस हिम. उसने मुझे अपने इंस्टा पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया है. आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम रियली कंफ्यूज्ड, हेल्प.
1: रोशी के डीएम से.
0: श्रेष्ठा का मुझे मैसेज आया है. श्रेष्ठा, आई हेट टू ब्रेक इट टू यू, बट आई थिंक व्हाट दिस गाय हैज डन इज ही इज गोस्टेड यू इन द वर्स्ट वे पॉसिबल. वो आपको क्लब में मिला, ही हैड अ ग्रेट टाइम विद यू, मे बी यू वर बोथ ड्रंक दैट नाइट, यू हैवन टोल्ड मी, लेकिन मे बी ही इवन हैड अ गर्लफ्रेंड, मे बी ही वॉज मैरिड, वी डोंट नो. लेकिन द फैक्ट कि उसने उसको उसने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, जस्ट गोस टू शो दैट वट एवर हैपन दैट नाइट इज नॉट गोइंग टू रिपीट इट सेल्फ. तो मेरी सजेशन मानो तो आई थिंक यू शुड जस्ट क्लोज दिस चैप्टर एंड नॉट इन्वेस्ट एनी मोर, क्योंकि आप जितना इन्वेस्ट करोगे इसके बारे में, जितना सोचोगे भी, यू आर गोइंग टू एंड अप फीलिंग टेरेबल अबाउट योर सेल्फ. एंड ऑनेस्टली ऐसे लोग होते हैं ना दुनिया में, दे गिव गाइज अ रियली रियली बैड नेम. ऑन दैट नोट, अगर आपकी भी जिंदगी में श्रेष्ठा की तरह कोई भी प्रॉब्लम है, दुविधा है, संकट है, हिट मी अप, वी विल ट्राई एंड फिगर अ वे आउट ऑफ इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक, एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, हीलियम है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सब फालतू इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों याद है? क्योंकि मैंने स्कूल में साइंस भी नहीं ली थी. एंड नाउ आई नो कि मुझे ये सब क्यों पता है, क्योंकि एक नई रिसर्च के हिसाब से फॉलिंग इन लव इम्प्रूव्स योर मेमोरी. एंड गिवन हाउ मेनी टाइम्स आई हैव फॉलन इन लव, मेरी मेमोरी एक एलिफेंट से भी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, विच इन फैक्ट इज अ मिथ. एलिफेंट्स की मेमोरी हमसे कोई बेटर नहीं होती है. ये सब क्या सिखाते पढ़ाते रहते हैं हमें? इस सब से तो बेटर है फॉल इन लव, लर्न इन लाइफ, राइज इन लाइफ. अगर ऐसे ही टिप्स एंड टिक्स एंड फालतू के फैक्ट्स चाहिए आपको, वाई डोंट यू हिट मी अप? हम दोस्ती करते हैं और उसके बाद रोज आई विल हिट यू विद absolutely useless facts like this, that falling in love improves your memory. Mera naam hai Mirchi Roshi. I'm the girl in love with love, obvio, which is why I'm in love so often. Hit me up Insta ya FB par. Let's do friendship. And while you do that, kahin mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi. It's hot.

0: 10 out of 10
1: क्यों नहीं चाहिए चल
0: ओके देन भरे कलब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल ही तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: फिर जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।

एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपना डेंचर क्यों उतार रहे हैं भाई साहब? दैट इज एग्जैक्टली द थॉट आई हैड इन माई माइंड. ओके, सो आई वेंट आउट ऑन दिस डेट वंस और ये बंदा मुझे एक डेटिंग ऐप पे मिला. बहुत सही, 10/10 ऑलमोस्ट साउंड कर रहा था. एंड आई वाज लाइक, या वी टोटली हैव टू मीट और ये वो. तो हम बैठे एंड वी लाइक इट दिस रियली नाइस फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट. हमारा सूप आया, हमने सूप खाया, सब कुछ सही था, सैलेड आया और सडनली ये बंदा अपने मुंह में अपने हाथ डाल के ना पता नहीं क्या हिला रहा था अपने दांतों में. इट वाज सच अ क्रीपी एक्सपीरियंस एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई वाज लाइक, आई एम सॉरी, आप ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? एंड ही लुक्ड एट मी एंड सेड, यार वो मेरे ना इनविजिबल ब्रेसेस लगे हैं, तो मैं अपने ब्रेसेस उतार रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा कैसे? एंड आई एम थिंकिंग टू माई सेल्फ, श्योर इट्स ग्रेट, आप किसी भी उम्र में ब्रेसेस लगा सकते हैं, इट्स ऑल राइट दैट यू हैव ब्रेसेस, बट ये बाथरूम में जाके भी उतार सकते हैं? टेबल पे बैठ के फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में भाई ये बंदा अपने ब्रेसेस उतार रहा था. एंड आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू, अगर आपका थिएटर ऑफ द माइंड एक्टिव एंड अलाइव है, यू कैन टोटली इमेजिन ये कितना क्रीपी लग रहा था. ओके, लाइक फुल फ्रेंच बियर्ड वाला बंदा अपने दांतों में से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है. एंड इट वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द creepiest date for sure that I've ever had in my life. और अगर ऐसे ही आपकी भी जिंदगी में creepy AF dates की कमी ही नहीं है, why don't you hit me up? We will compare notes. मेरे पास अभी बहुत सारी stories हैं आपको सुनाने के लिए. And to do that, you can hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है ROCHIE. So go ahead and do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आज मेरी बेस्टी और मैं नोट्स कंपेयर कर रहे थे एंड वी रियलाइज दैट हम दोनों इकलौते पागल नहीं है. एटलीस्ट वी आर अ कपल ऑफ पागल, बट ऑल्सो हम दोनों जब जिंदगी में दुखी होते हैं, ब्रेकअप हो गया होता है, किसी पे क्रश कर रहे होते हैं, जो भी सीन होता है, हम अपने आप से शावर करते करते बातें जरूर करते हैं, लाइक हाउ डू यू फील अबाउट दिस. हाँ, आई फील ओके अबाउट इट. हाउ डू यू फील अबाउट द फैक्ट कि हो सकता है दैट ही इज जस्ट इंटरेस्टेड इन यू, यू नो, फॉर नॉटी बिट्स बट नॉट अदर थिंग्स. नहीं यार, ऐसा हुआ तो मैं उसे डंप कर दूंगी. दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन मेरी बेस्टी करती है जब वो अपने लंबे बाल शैम्पू कर रही होती है, मैं करती हूँ जब मैं अपने छोटे बाल शैम्पू कर रही होती हूँ. एंड आई रियलाइज वी आर नॉट अलोन. हम सब अपने आप से बात करते हैं. सो टू कोट करीना कपूर आउट ऑफ जब वी मेट, मैं अपनी फेवरेट हूँ. और अगर आप भी ऐसे ही अपने आप से व्हाइल यू आर शावरिंग और शेविंग अपने आप से बातें करते हो क्योंकि आप अपने फेवरेट हो, देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड आई लेट माई बेस्टी नो दैट अब हमारे पागलों की टोली में देयर इज वन मोर एडिशन. एंड टू डू दैट यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड बेबी, डू व्हाट यू आर सो गुड एट डूइंग, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपने अपनी बेस्टी को बोला था यू कांट डेट हर बिकॉज आपके मन में ऐसे डेटिंग की स्थिति उपस्थित नहीं है, लेकिन द ट्रूथ इज दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर बेस्टी एंड राइट आफ्टर व्हेन अ हॉट गर्ल प्रपोज्ड यू सेड यस टू हर. शर्म नहीं आती आपको ऐसे गंदे गंदे काम करते हुए?
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: इट इज टाइम फॉर द सीक्रेट बॉक्स. अगर आपके पास है कोई भी सीक्रेट कन्फेशन टू मेक, मेरे पास है उसे सुनने के लिए. नॉन जजमेंटल कान मेरी जान. सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी,
2: हाउ आर यू?
4: आई एम गुड. हाय, हाउ आर यू?
2: मैं तो ठीक हूँ. आप इतने दुखी क्यों साउंड कर रहे हो? जीवन में सब कुशल मंगल है ना?
4: हाँ, सब कुशल मंगल है, बट एक छोटी सी चीज बतानी थी.
2: हाँ, ऐसे लग भी रहा है कि आपके दिल में बहुत बड़ा भार है, इसे अपने दिल में मत रखो. व्हाट्स योर कन्फेशन, मॉर्निंग ग्लोरी?
4: सो रोशी, द थिंग इज आई एम इन अ रिलेशनशिप और हमारी रिलेशनशिप को 6 महीने हो चुके हैं. बट द थिंग इज, स्टार्टिंग के 3 महीने में ना, मतलब शी केम टू माई प्लेस एंड बहुत अच्छा टाइम जा रहा था. द एक्शन वॉज रियली गुड एंड मतलब बहुत मजा आता था. बट थोड़े टाइम बाद आई सजेस्टेड कि वी शुड हैंग आउट एट योर प्लेस. एंड वो फेज शुरू भी हुआ एंड शी वॉज रियली हैप्पी कि उसको ये लग रहा था कि मैं शायद उसके पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी करना चाह रहा हूँ. उनका एक पेट है टॉमी, उसके साथ भी बॉन्डिंग अच्छी करना चाह रहा हूँ. एंड शी वॉज रियली हैप्पी. बट रोशी, द थिंग इज, जब उसके घर जाके हैंग आउट करो तो उसकी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है. तो मेन मोटिव वॉज कि वहां जाके अगर मेरे को अच्छा 3 टाइम

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
4: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: देख
1: मिर्ची
2: ROCHIE
3: रोशी रोशी
1: मिर्ची रोशी
4: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
5: मैं हमेशा कहती हूँ कि प्यार इट्स नॉट अ थिंग दैट यू से, इट्स अ थिंग दैट यू डू। प्यार कहने से नहीं होता है, प्यार जताने से होता है। एंड यू नो व्हाट आई फील, रिसेंटली आई वाज विद समबडी एंड बहुत ट्रेपिडेशन के साथ आई स्टार्टेड टू डेट दैट पर्सन बिकॉज मुझे अपनी सिंगल लाइफ बहुत अच्छी लगती थी और मैं उसे बहुत अरसे से जानती थी, सो आई काइंड ऑफ ट्रस्टेड हिम। एंड देन एक दिन उसके इतने कहने के बाद दैट आई लव यू, आई लव यू, और मेरे मानने के बाद दैट ही लव मी, हमारा एक नॉर्मल रेगुलर सा झगड़ा हुआ। एंड उस झगड़े में उसने मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही जो विच वर डिज़ाइन टू हर्ट मी, और अगले दिन उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ मैं उस समय तुझे हर्ट करना चाहता था तो मैंने ये सब बातें करी हैं जिनका सच में कोई रूट नहीं है। एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट लाइक वो सारे समय जब उसने मुझसे आई लव यू कहा था, क्या वो सच में ये मानता था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है? क्योंकि जब एक कॉन्फ्लिक्ट, छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट आया तो वहाँ उसने अपने आप को मुझसे पहले रख लिया।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: द शो स्टार्ट्स इन
3: कुछ साल पहले तक बॉलीवुड को लगता था कि ऑडियंस को क्या चाहिए वो उसे पता है। फिर ऑडियंस ने एक दिन सीधा कह दिया, नहीं यार, अब तुम नहीं, हम डिसाइड करेंगे। और तब से कुछ बदला है। धमाल 4, कॉकटेल 2, वेलकम टू द जंगल जैसी फिल्में अपनी फेमिलियर दुनिया के साथ अब भी चल रही हैं, लेकिन साथ में यू गॉट फिल्म्स लाइक टॉक्सिक, आवारापन, हैवान, धुरंधर भी। ऐसी फिल्में, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें शायद 5-10 साल पहले कोई फिल्म मेकर पिच करने से पहले दो बार सोचता। और बात ये नहीं है कि लोगों ने कमर्शियल सिनेमा को रिजेक्ट कर दिया, बात सिर्फ इतनी है, अब ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझकर एक्सेप्ट करने का जमाना गया। आज फिल्म मेकर रिस्क लेता है तो जनता उस रिस्क को नोटिस करती है, कभी गले लगाती है, कभी सीधा रिजेक्ट कर देती है। और शायद इसलिए धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं लगती। जैसे दिल चाहता है ने एक वक्त पर हिंदी सिनेमा का एक नया पन्ना खोला था, शायद धुरंधर भी एक पेज टर्नर है। और आज का पहला पन्ना खुलता है नंबर 20 पर, जाइए सजना बाय जैस्मिन सैनलाज फ्रॉम धू रन धड़।
4: नंबर 20

0: यार सीक्वल बनाना वैसे भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन धुरंधर गॉट इट राइट एंड समहाउ इवन धमाल 4 गॉट इट राइट। उसका गाना चटनी इज ऑन नंबर 19 दिस वीक, लेकिन चटनी के ठीक ऊपर है इस हफ्ते का गाना नंबर 18, विच इज हुमा कुरैशी की फिल्म बेबी डू डाई डू का गाना इश्क कमीना, ओरिजिनली पिक्चराइज्ड ऑन शाहरुख खान एंड ऐश्वर्या राय। सो आई डोंट नो कि इस गाने की पॉपुलैरिटी का क्रेडिट कितना इन दोनों को जाता है मोर देन दिस फिल्म बेबी डू डाई डू, लेकिन नंबर 17 पर जो आ रहा है उसमें एक अलग ही वॉर्म्थ है, शान, बस शान की आवाज।
1: जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन वो लड़की है कहाँ।
0: कुछ आवाजें गाना नहीं गाती, सीधा स्क्रीन पर एक्टर को खड़ा कर देती हैं।
1: सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती।
0: सैफ अली खान
1: पर गुस्से में जब आए और आंखें वो दिखलाए, लड़ते लड़ते गलती से मुस्काए।
0: सैफ अली खान तुम्हें

0: फिर से सैफ अली खान, म्यूजिक हटा दीजिए, अरेंजमेंट को भी हटा दीजिए, सिर्फ शान की आवाज, फिर भी सामने वही सैफ अली खान। दिल चाहता है हम तुम सलाम नमस्ते तारा रम पम। शान और सैफ एक ऐसी जोड़ी जो बॉलीवुड को थोड़ा हल्का, थोड़ा मासूम, थोड़ा खूबसूरत बना देती थी, और अब लगभग 20 साल बाद दोनों फिर साथ आए हैं। बस इस बार सैफ हीरो नहीं, पापा हैं, और शान की आवाज भी कुछ वैसी ही है, सिर्फ कहानी बड़ी हो गई है। नंबर 17 पर डेब्यू इन दिस वीक ऑन द मिर्ची टॉप 20, ये है मेरे हीरो है वो, हैवान से प्रीतम दा का म्यूजिक।
1: नंबर 17,
2: लेके जन्म पहला पहला कदम, जब चलते हैं हम उंगली थामे कोई,
3: लिख रहे हो ना,
2: तुम भी गाओ।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 13.

आरी आरी सालों से एग्जिस्ट करता था, लेकिन धुरंधर ने उसके अंदर एक नया मीनिंग भर दिया। अब जब भी ये बीट बजती है तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, रणवीर सिंह की, बदले की आग में पूरी तरह गोइंग बिजर्क। नंबर 13 पर इट्स आरी आरी फ्रॉम धुरंधर द रिवेंज। और शायद सिनेमा में गाने की असली पावर यही है यार, कभी फिल्म किसी गाने को अपना बना लेती है और कभी कोई गाना फिल्म से बाहर निकलकर अपनी दुनिया बना लेता है। अनिरुद्ध रविचंद्र का बनाया एक ट्रैक द राग ऑफ रिवेंज इसका परफेक्ट एग्जांपल है। ये फिल्म के लिए बना ही नहीं था, कैन फिल्म फेस्टिवल के लिए एक फिल्म डीसी नाम की भेजी जा रही थी और उसके लिए ये ट्रैक एक लास्ट मिनट एडिशन था, लेकिन फिर इंटरनेट ने इसे पकड़ लिया

0: gym edits, anime fights, gangster montages, transformation videos, vocal challenges. 48 ghante mein ye gana ho gaya totally viral. और सबसे क्रेजी बात पता है क्या है? इस गाने को किसी फिल्म की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ी. कभी कभी एक थीम सिर्फ फिल्म का साउंड ट्रैक नहीं होती, वो फिल्म का एटीट्यूड बन जाती है. लेकिन अब इसी एटीट्यूड से बिल्कुल एक अलग फ्लेवर की तरफ जाने वाला हूं मैं, बिकॉज नंबर 12 पर है द मेडिटेरेनियन फील ऑफ माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2.
1: नंबर 12.

0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 7.

तबाही नाम ही काफी है, लेकिन कितनी टॉक्सिसिटी फैलेगी सिनेमा स्क्रीन्स पर, वेल आई डोंट नो। लेकिन इसी मैडनेस के बीच एक गाना और है जो सुनने में वैसे लव सॉन्ग लगता है, जैसे एक लड़का अपनी महबूबा के लिए ये गाना गा रहा हो, लेकिन शायद ये गाना वैसा है नहीं। तेरा मेरा रिश्ता 2007 में इमरान हाशमी एक ऐसे इंसान की तरह गा रहे थे जो किसी इंसान से नहीं अपने खुदा से सवाल कर रहे थे, और अब 19 साल बाद आवारापन 2 में वही रिश्ता वापस आया है। बस एक चीज बदल गई है, पहले इंसान खुदा को बुला रहा था, इस बार खुदा इंसान से बात कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है, मिथुन के म्यूजिक में खुदा अक्सर एक किरदार की तरह आते हैं, कभी दूर कभी खामोश और कभी एक टूटे हुए इंसान के बिल्कुल सामने। मर्डर 2 का ए खुदा याद कीजिए।

0: वही डेस्पिरेशन, वही सवाल, वही यकीन और शक के बीच का वो एक पल। शायद इसलिए तेरा मेरा रिश्ता को 2007 में सुनना और आज 2026 में सुनना दो अलग अलग अनुभव हैं, टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। कभी कभी ये गाना दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होता, इंसान और उसके खुदा के बीच की बात होती है। और 19 साल बाद शायद उस बात का जवाब भी आ गया है। तेरा मेरा रिश्ता, आवारापन 2,
1: नंबर 6।

कभी कभी किसी आवाज की कीमत तब समझ आती है जब हमें पता चल जाता है कि शायद अब वो आवाज रोज नहीं सुनाई देगी। ये आवारापन इज ऑन नंबर टू, लास्ट वीक इट वॉज ऑन नंबर वन, लेकिन आवाज वही है अरिजीत की। और अजीब बात यह है, अरिजीत अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुका है, लेकिन जाते जाते भी ऐसे गाने दे रहा है जो हमें उसे जाने नहीं देना चाहता। और शायद इसलिए उसका गाया हुआ एक गाना थोड़ा ज्यादा महसूस होता है, खासकर उसकी कही हुई, सॉरी गाई हुई एक लाइन।

15 साल पहले जब अरिजीत ने ये लाइनें गाई थी तब ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत खूबसूरत स्टैंजा है, लेकिन आज सुनता हूं तो लगता है जैसे किसी ने हमें पहले ही अंदेशा दे दिया था कि एक दिन ये लम्हे गुजर जाएंगे। यार इस बीते हुए 1.5 दशक में हमारे बीच कितनी आवाजें आई हैं, लेकिन मेरी जेनरेशन की खुशियां, उनकी तन्हाइयां और उनके हार्ट ब्रेक्स, अरिजीत की आवाज ने इन सबका सिर्फ साथ नहीं दिया, इन्हें डिफाइन किया है। और अब जब एक दौर धीरे धीरे खत्म होने की दहलीज पर पहुंच रहा है, शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि अरिजीत की कमी महसूस होने से पहले ही उनकी याद हमारे पास आ चुकी है। और आज उस याद का एक और पन्ना मैं आपको सुना रहा हूं, बिकॉज दिस सॉन्ग हैज वंस अगेन क्लाइम्ड टू नंबर 1। अरिजीत विद अनदर मेमोरी, दिस इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। नंबर 1।

0: और एक बार फिर गहरा हुआ ने सबसे ऊपर छोटी पर अपनी जगह बना ली है। अरिजीत सिंह की आवाज, धुरंधर का जुनून और मिर्ची टॉप 20 का एक और एपिसोड। बस आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

टीडीएलजे ले लो, मोहब्बतें ले लो, रब ने बना दी जोड़ी ले लो, ये तीनों और भी कई सारी हिट हिट फिल्में, धूम ले लो, वॉर टू ले लो, ऑल ऑफ देम, ये सब बनाने वाले थे आदि चोपड़ा यानी आदित्य चोपड़ा। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने ये फिल्म मेकिंग जो थी ये सीखी कौन सी फिल्म से, कौन सी फिल्म के साथ उन्होंने सेट पे पहली बार कदम रखा था, आज उसी फिल्म को लेकर के आई हूँ। यश चोपड़ा साहब बना रहे थे चांदनी, ओ मेरी चांदनी। वेल, इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए उन्होंने अपने बेटे को असिस्टेंट डायरेक्टर यानी आदि चोपड़ा को असिस्टेंट डायरेक्टर रखा था, और बस इसी फिल्म की बारीकियों को सीख करके आदित्य चोपड़ा ने आगे आने वाली सारी फिल्में बनाई। चांदनी के ना बहुत सारे किस्से हैं, सब पता करके लाई हूँ, एक एक करके शेयर करूंगी। अभी जल्दी किस बात की है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे सुनो होता है क्या। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यश चोपड़ा साहब ने तो अपनी चांदनी रेखा जी में देखी थी पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। एंड आज जिस फिल्म की बातें हो रही हैं वो है रंग भरे बादल में तेरे नैनों के काजल में मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी। सो यश चोपड़ा साहब ने जब ये फिल्म बनाई ना वो चाहते थे कि चांदनी के रोल में उमराव जान, मेरा मतलब है कि रेखा जी आए। एंड ऑल्सो बिकॉज चांदनी नाम काफी फेमस हो चुका था लोगों के बीच में। पूछो क्यों? क्योंकि इस फिल्म से पहले यश चोपड़ा साहब ने बनाई थी सिलसिला और सिलसिला में चांदनी बनी थी रेखा जी, यानी कि उनका नाम, उनके कैरेक्टर का नाम चांदनी था। लेकिन रेखा जी ने ना अनएक्सपेक्टेडली, यश साहब को कोई मना नहीं करता था, उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया। क्यों किया? इंटरेस्टिंग स्टोरी, अभी बताऊंगी आपको। गाने सुनकर के वापस आओ। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mirchi New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

क्योंकि रेखा नहीं चाहती थी कि चांदनी की कोई भी याद उनके पास अब रह जाए। पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीदेवी वाली चांदनी। अब हुआ ये कि यश चोपड़ा साहब चाहते थे कि रेखा जी उनकी फिल्म की चांदनी बने, और ऐसा इसलिए भी बिकॉज सिलसिला जब उन्होंने बनाई थी ना, जो कि चांदनी से पहले थी, उसमें रेखा जी ने चांदनी का कैरेक्टर प्ले किया था। एंड जब यश साहब उनके पास ये रोल का ऑफर लेकर के गए, He never expected कि रेखा जी इस इतने मीठी रोल से, इतने खूबसूरत रोल से मना कर देंगे, क्योंकि इस रोल में बहुत सारे शेड्स थे। रेखा जी ने पता है क्यों मना किया? शी सेड कि मुझे ना, जब मैंने सिलसिला करी तो बहुत ही मेरी फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि टॉर्चर हुआ, और वो काफ़ी ड्रेनिंग था मुझे सिलसिला को फिर से रिपीट नहीं करना। एंड दैट्स व्हाई शी डिनाइड कि सिलसिला से रिलेटेड अगर एक कैरेक्टर का नाम भी चांदनी रिपीट हो रहा है तो वो उस यादों में नहीं जाना चाहती थी। ऑलराइट, फिर श्रीदेवी कैसे आई बताऊंगी आपको। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दीक्षित, सारी उस टाइम की बड़ी एक्ट्रेसेस ने ये रोल करने से मना कर दिया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, चांदनी फिल्म की बात हो रही है। कौन सा रोल मना कर दिया? देविका का रोल। देविका विनोद खन्ना की वाइफ दिखाई जाती है, जो कुछ देर के लिए आती है, एक आध गाने में आती है, एंड दैट्स इट। वेल ऑफकोर्स उस टाइम की सारी एक्ट्रेसेस को लगा कि इतना बड़ा रोल, इतना मीठी रोल जो है चांदनी का, वो तो श्रीदेवी को जा रहा है। अब श्रीदेवी के सामने हमें से कौन टिकेगा, इसलिए मोस्ट ऑफ देम डिनाइड डूइंग द रोल। फिर आई जूही चावला। जूही चावला एकदम फ्रेश फेस थी उस समय, एंड शी वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू यू नो बिग फिल्म, शी वॉज ट्राइंग टू वर्क विद बिग डायरेक्टर्स। तो जैसे ही यश साहब ने ये न्यू कमर जूही चावला को रिक्वेस्ट किया, वो फौरन मान गई, एंड दिस वर्कड आउट इन हर फेवर। क्योंकि इसके बाद एक अच्छा सा मेकओवर दे करके यश साहब ने लॉन्च की अपनी जूही चावला को इन द फिल्म डॉर। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ज्योमेट्रिक प्रिंस इन्होंने सिलसिला में भी पहने पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना उस जमाने की हीरोइंस के लाए हुए फैशन स्टेटमेंट्स जो हम आज तक इस जमाने में फॉलो करते हैं ना, वो ढूंढ करके लाई हूँ मैं। सो रेखा जी ना ज्योमेट्रिक प्रिंस पहनती थी और जंप सूट्स जो आजकल हमें बहुत पसंद है, एक्चुअली में सबसे पहले रेखा जी ने पहने थे। खूबसूरत फिल्म ले लो, सिलसिला ले लो, एंड सो मैनी ऑफ देम। भाई, शी वॉज नोन फॉर हर बोल्ड लुक्स और फिर उनकी रेड चटक लिपस्टिक। ओहो, वैसे रेखा जी की बिंदी भी ना बहुत पॉपुलर हुई थी, वो ब्लैक वाली भी और रेड वाली भी जो उन्होंने सिलसिला में लगाई है। आज ना ऐसी वो सारी हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स जो कि पूरे इंडिया में रेज बन गए थे, हर लड़की फॉलो कर रही थी, हर लड़की जो कॉलेज गोअर थी, हर लड़की जो हॉस्टल में रहती थी, हर लड़की। वेल, आज पुरानी जीन्स पे अगला किसका बताऊंगी, हाउ अबाउट जीना तमान। तो वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गोविंदा ने इस रोल से मना किया और उसके बाद अनिल कपूर ने इस रोल से मना किया, और दोनों का रीजन पता है क्या था? उनको व्हील चेयर पे नहीं बैठना था। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड यश चोपड़ा साहब को अपने रोहित को तो व्हील चेयर पे बैठाना ही था। वेल फाइनली उस रोल को हाँ करी थी ऋषि कपूर ने। पुरानी जीन्स पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी, इसी फिल्म के गाने भी हो रहे हैं। तो यश चोपड़ा साहब ने सबसे पहले अनिल कपूर को ये रोल ऑफर किया था ऑपोजिट श्रीदेवी, ही सेड नो। उसके बाद उन्होंने ऑफर किया था ये रोल गोविंदा जी को, ही ऑल्सो सेड नो। मतलब दोनों लोगों को लगता था कि भाई डांस वाला हीरा है जिसमें एक्शन चल रहा है हीरो का, ये वो हीरा है जहां फिल्में बन रही हैं जिसमें डांस हो रहा है हीरो का, ऐसे में मेन लीड अगर व्हीलचेयर पे बैठ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन यश साहब को पता था कि उनको अपने हीरो को सिंपथी दिलवानी है ऑडियंस से और उसके रैश बिहेवियर को जस्टिफाई करना है। फाइनली इस रोल को ऋषि कपूर ने ऑफकोर्स हामी भरी, एंड देन वी ऑल नो इट वॉज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
3: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
4: अब मिर्ची खा।
6: Radio Mirchi, it's hot.

चांदनी जैसी रोमांटिक फिल्म ना उस दौर में आई थी जब उस समय सिर्फ और सिर्फ एक्शन फिल्मों का बोलबाला था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और एक्शन फिल्में ही लोग देखने जाते थे बॉक्स ऑफिस पे। नाउ चांदनी कहते हैं कि वो उस रोमांटिक जॉनरा को ना फिर से वापस लेकर के आया। लेकिन आपको पता है यश चोपड़ा साहब को ये आइडिया आया कहाँ से? मैं बताती हूँ। कहते हैं कि यश चोपड़ा साहब पुणे से लेकर के बॉम्बे तक एक गाड़ी में बैठ के जा रहे थे किसी काम से, एंड ही सडनली

कि वेयर इज द रोमांस. दैट वॉज द टाइम जब उनको लगा कि ओहो ये वो टाइम है जब मुझे वापस इंडिया को, बॉलीवुड को ना रोमांस देना चाहिए. और उन्होंने चांदनी बना दी. एंड वॉट अ सुपर डुपर हिट फिल्म. वेल, आज इसी फिल्म की बातें, इस फिल्म के गाने श्रेया के साथ. तो बस मिर्ची सुन रहे हो और सुनते रहो

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: आजादी हो।
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: अरे सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: Ezra Hopkins Gudai. Ezra Hopkins Gudai.
1: विनोद खन्ना की इस आदत से बहुत परेशान हो गए थे यश चोपड़ा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर हिट फिल्म चांदनी। अब क्या हुआ कि विनोद खन्ना हमेशा सेट पे बहुत लेट आते थे। यश चोपड़ा यूज्ड टू बी ऑलवेज पंक्चुअल, ऑलवेज ऑन टाइम एंड रेस्ट ऑफ द क्रू एज वेल। श्रीदेवी तो उस समय नई नई स्टार थी। सो विनोद खन्ना के लेट आने के चक्कर में यश चोपड़ा साहब को इतना खराब लगा, इतना गुस्सा आया दैट इट इवेंचुअली लेड टू चेंजिंग द स्क्रिप्ट। अगर आप चांदनी देखो तो होता क्या है कि पहले स्क्रिप्ट में ये सोचा गया था स्टोरी लाइन में कि फर्स्ट हाफ विल बी डेडिकेटेड टू ऋषि कपूर एंड आफ्टर ही मीट्स द एक्सीडेंट उसके बाद इंटरमिशन के बाद विनोद खन्ना पे फिल्म जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो इसलिए क्योंकि विनोद खन्ना के सीन्स लेने में ही ना आधे से ज्यादा दिन निकल जाता था और आधा दिन उनका वेट करने में। तो यश चोपड़ा साहब ने ना एकदम स्क्रिप्ट ही बदल दी। उन्होंने विनोद खन्ना को एक्चुअली में बस एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह थोड़े बहुत सीन्स दिए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ चांदनी के गाने आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ, और आज चांदनी फिल्म की बातें हो रही हैं, इस फिल्म के गाने हो रहे हैं, और जो अगला गाना है वो मुझे लगता है कि हर ब्राइड अपने संगीत में कभी ना कभी जरूर गाती है और इस पे परफॉर्म करती है। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, इसमें पहला संदेशा पता नहीं किसका आया, दूसरा संदेशा, तीसरा संदेशा, इट इज सच अ वेडिंग सॉन्ग। एंड यू नो ये गाना किसने गाया है? You'll be shocked to know, you'll be surprised to know. Well, ये गाना पैमेला चोपड़ा जी ने गाया है, यानी यश चोपड़ा की वाइफ। तो ये गाना आज हो जाए।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

व्हाइट चूड़ीदार, व्हाइट कुर्ता एंड लहरिए वाला दुपट्टा, पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। और कहते हैं चांदनी चौक के जितने भी स्टोर्स थे, जितनी भी शॉप्स थी, उन पे ना ये कॉस्ट्यूम कम पड़ गई थी, हजारों लड़कियां बस यही खरीद के जा रही थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी। सो भाई, इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर पहले थी भानु अथैया जी, यस द रिनाउंड भानु अथैया जी। व्हाट हैपेंड वाज कि उनके कुछ क्लैश हुआ यश चोपड़ा जी के साथ एंड शी लेफ्ट द फिल्म। उसके बाद इन केम लीना दारू, एंड लीना दारू ने भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस को यू नो ड्रेस किया था, बट फॉर हर चांदनी जैसा यश जी ने डिस्क्राइब किया था ना, उनके लिए उन्होंने बस एक व्हाइट कुर्ता, व्हाइट चूड़ीदार एंड लहरिए वाला दुपट्टा चूज किया एंड इट बिकेम आइकॉनिक। मेरी मॉम भी बताती हैं कि मतलब हर कोई वही कॉस्ट्यूम, हर लड़की वही कॉस्ट्यूम पहनना चाहती थी और पहनी भी। आप सोचो, हजारों स्टॉक आता था चांदनी चौक में, ये आज तक की भी स्टोरी है। और व्हाइट चूड़ीदार और व्हाइट कुर्ता खत्म कुछ ही दिनों में। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म का गाना, विच इज संग बाय सुरेश वाडकर, कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
3: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
4: Har gana hit, har dusra gana super hit.
5: Only on Radio Mirchi. It's hot.
6: Ah, ah,
0: ah, ah. Aap sun rahe hain Purani Jeans. श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
7: सावन का महीना पवन का

गोविंदा ने इस रोल से मना किया और उसके बाद अनिल कपूर ने इस रोल से मना किया, और दोनों का रीजन पता है क्या था? उनको व्हीलचेयर पे नहीं बैठना था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड यश चोपड़ा साहब को अपने रोहित को तो व्हीलचेयर पे बैठाना ही था। वेल फाइनली उस रोल को हाँ करी थी ऋषि कपूर ने। पुरानी जीन्स पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी, इसी फिल्म के गाने भी हो रहे हैं। तो यश चोपड़ा साहब ने सबसे पहले अनिल कपूर को ये रोल ऑफर किया था ऑपोजिट श्रीदेवी, ही सेड नो। उसके बाद उन्होंने ऑफर किया था ये रोल गोविंदा जी को, ही ऑल्सो सेड नो। मतलब दोनों लोगों को लगता था कि भाई डांस वाला हीरा है जिसमें एक्शन चल रहा है हीरो का, ये वो हीरा है जहां फिल्में बन रही हैं जिसमें डांस हो रहा है हीरो का, ऐसे में मेन लीड अगर व्हीलचेयर पे बैठ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन यश साहब को पता था कि उनको अपने हीरो को सिंपथी दिलवानी है ऑडियंस से और उसके रैश बिहेवियर को जस्टिफाई करना है। फाइनली इस रोल को ऋषि कपूर ने ऑफकोर्स हामी भरी एंड देन वी ऑल नो इट वॉज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कम राइट बैक।

0: कुछ कहता।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन
5: ब्रेकिंग न्यूज मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना हिट.

0: Union, Radio Mercy, New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: नहीं।
1: पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और ये तो वही टाइम होता है जब आराम से गाड़ी में बैठते हैं, मैं और आप गाड़ी के शीशे नीचे करते हैं और ठंडी हवा के झोंके में लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ उन लोगों को जो दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, जो जानते हैं कि उनका जो दिल पर है यानी जिससे वो प्यार करते हैं या फिर जो उनसे प्यार करता है, वो उनकी एक हाँ सुनना चाहता है लेकिन वो बस उन्हें टीज करके चले जाते हैं, कभी मुस्कुरा के कभी नाराज होके, लेकिन दिल की बात जुबा पे नहीं लाते। ये गाना आज उन्हीं लोगों के लिए। ऑन दैट नोट दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ, गुड नाइट। अगर आपको मुझसे वन टू वन ऐसे बात करनी है ना, या तो सिर्फ मैं बात करती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे एसएचआर श्रेया विद लव मेरा हैंडल है। गुड नाइट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। अरे

0: पूरा जर्सी जानता है, यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244, यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Har gana hit, har dusra gana super hit.
4: Only on Radio Mirchi. It's hot.

0: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Recharge Morning, only on Mirchi. It's hot. Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कई गहरे लाइफ लेसन्स को समझने का मौका भी है। आइए साथ में इन लेसन्स को जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: गुड मॉर्निंग सिस्टर, कैसे हैं आप?
4: गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे, आप कैसे हैं?
3: बहुत बढ़िया। ऐसे ही मैं हाल फिलहाल में पढ़ रहा था कुछ, तो एक बहुत खूबसूरत सी कहानी मुझे मेरे फीड पे आ गई, और उससे मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि अल्टीमेट पावर की शुरुआत ना एक जेल की कोठरी से हुई थी। जन्माष्टमी आने वाली है और कृष्ण भगवान के जन्म जैसे सब जानते हैं जेल की कोठरी में हुई थी। कई बार क्या है कि हमें लगता है कि पावर को लाने के लिए, किसी भी चीज़ के अच्छे सफल शुरुआत के जर्नी के लिए सब कुछ परफेक्ट होना ज़रूरी है। हम सही जगह पैदा हों, सही फैमिली में पैदा हों, हमारी एडुकेशन सही हो, वैल्यू सही हो, और तब जाके हम एक पावरफुल इंसान बनेंगे। और इससे मैं सोच रहा था कि जितने भी पावरफुल लोगों के एग्जाम्पल है, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, चाहे वो महात्मा गांधी, वो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे सर्कमस्टेंसेस से गुजरे हैं जहाँ पे बहुत मुश्किलात हुई है, और उसके बाद कहीं आप बहुत एक ऐसा काम कर पाए जो दुनिया याद रखती है। तो क्या कष्ट बहुत जरूरी है जिंदगी में जिसके कारण आप एक पावरफुल सोल बन पाए?
4: कष्ट जरूरी है कि नहीं वो तो नहीं मुझे पता, लेकिन इनएविटेबल है।
3: इनएविटेबल है,
4: जिस समय से हम गुजर रहे हैं हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही है। कष्ट से ज्यादा जो चीज इम्पोर्टेंट है वो है पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण। आप देखें कई लोगों के सामने सेम सीन होती है। अगर आप कष्ट की भी बात करें, कई कहते हैं वो बड़े होकर के बहुत अग्रेसिव एंग्री इसलिए होते हैं, कहते हमारा चाइल्डहुड बहुत रफ रहा,
3: ट्रॉमा रहा। हाँ, बिल्कुल।
4: और वहीं पर ही कोई कहते हैं कि क्योंकि हमारा चाइल्डहुड बहुत रफ रहा इसलिए हम बहुत काइंड और कंपैशनेट है।
3: बिल्कुल।
4: तो कई बार कष्ट है, एक ही चीज होगी, एक ही सीन होगा, एक ही सिचुएशन होगा, पर आपका दृष्टिकोण क्या है वही चीज किसी के लिए विजडम बन जाता है। वही तूफान किसी के लिए तोहफा बन जाता है, वही चैलेंज किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है। अगर आपके अंदर में एक इस प्रकार से होता है कि मुझे सीखना है, आई जस्ट डोंट वांट टू गो थ्रू इट, आई वांट टू ग्रो थ्रू इट, तो फिर आप किसी भी सीन से सीख करके अपने को एम्पावर कर सकते हैं। तो आई थिंक कष्ट का शुक्रिया करना चाहिए, वो हमें अनुभवी बनाता है, वो हमारे विजडम को ग्रो करता है, अगर हम ये दृष्टिकोण रखते हैं कि हर सीन एक्यूरेट है और ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। एवरी चैलेंज इज अ लेसन इन डिस्गाइज।
3: क्या बात, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गायत्र्यास्तु परम नास्ते, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरण।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि माम शरणागतम। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौर मंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: श्री कृष्ण को सारथी क्यों कहा जाता है और उनकी ये भूमिका हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है, आइए इस बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मुझे लगता है कि जैसे गणपति भगवान है ना, वो मेरे ख्याल से बच्चों के भगवान है। उनको हमेशा शरारत के रूप में ही दिखाया गया है, बहुत क्यूट से भगवान है, और इसलिए आप देखिए उनकी जो मूर्तियां भी है ना, कभी सोते हुए भी है, कभी भागते हुए भी है, तो बहुत क्यूट क्यूट उनके अवतार होते हैं। वैसे मुझे लगता है कृष्ण भगवान एक और भगवान हैं जिन्हें बचपन में जो लीलाएं वो करते थे वो शरारती दिखाया गया उनको, कभी माखन चोरी कर रहे हैं, कभी वो गोपियों को तंग कर रहे हैं, और इस पे बहुत सारे गीत भी बने हैं, गोविंदा आला रे, मैया यशोधा, ऐसे करके फिल्मों में बहुत सारे गाने बने हैं जो उनकी शरारत के बारे में बात करते हैं। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि इनसे इंस्पायर होके बहुत सारी चीजें ना उनकी शरारत वाली हम गुण ले लेते हैं, लेकिन शायद आगे जाके जो अच्छाई उसमें दिखाई जा रही है वो हम नहीं ले पाते। तो आज के दिन अगर हमको एक ऐसी चीज लेनी पड़े कृष्ण भगवान की लीलाओं से, तो वो कौन सी चीज पे हम फोकस कर सकते हैं?
4: पहले तो मुझे लगता है जब हम कृष्ण भगवान की बात करें या किसी भी देवी देवताओं की बात करते हैं, हम भले इस प्रकार की लीलाएं दिखा देते हैं, पर देवताओं की महिमा में जो लिखा गया है कि वो सर्व गुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये उनकी महिमा है। विच मीन्स वो चंचल नहीं होते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है।
3: अच्छा,
4: वो उत्तम से उत्तम पुरुष हैं जो मर्यादाओं पर चलने वाले हैं। लेकिन क्योंकि हमारा ये प्यार है तो उस प्रकार से हम कई बार दिखा देते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई लर्निंग होती है।
3: जी।
4: शायद बच्चे का प्रेजेंट में रहना है, बच्चे की इनोसेंस है, बच्चे की प्योरिटी है, पर वो बच्चा कोई चोरी करता होगा या वो किसी को तंग करता होगा या कोई को परेशान करता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो मुझे पर्सनली बेस्ट सब चीज के अंदर लगता है, जो एक अंडरस्टैंड करने की बात है कि श्री कृष्ण का जो रोल है वो सारथी का है। थ्रू आउट अगर आप देखें भगवान का रोल एक सारथी का है। हम हमेशा क्या करते हैं, ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो। युद्ध अर्जुन को करनी थी,
3: सही बात,
4: लेकिन श्री कृष्ण एक गाइड का काम करता है, सारथी का काम करता है। हम आप देखें जब भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो पहली चीज भगवान को क्या करेंगे, ये ठीक कर दो,
3: हमारी मदद करिए,
4: आप इसको चेंज कर दो। हम कई बार ये नहीं रियलाइज करते कि शायद वो सीन इसलिए आई है कि हमें चेंज होना है।
3: वाह, क्या बात है।
4: इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट चेंजिंग द सिचुएशन, समटाइम्स द सिचुएशन हैज कम फॉर यू टू चेंज।
3: बहुत बढ़िया,
4: आपकी टॉलरेंस बढ़े, आपकी एडजस्टमेंट पावर बढ़े। और इसीलिए श्री कृष्ण को या किसी को भी हम याद करें तो फरियाद नहीं करनी चाहिए कि इसको ठीक कर दो, पर याद करके अपने अंदर शक्ति भरनी चाहिए कि हम उस सीन का कैसे सामना कर सकें। सो ऑलवेज रिमेम्बर, वो गाइड है, वो सारथी है, और वो वहां पर हमें रास्ता दिखाने के लिए, ताकि ये कुरुक्षेत्र कहें या कर्म क्षेत्र कहें, कर्म हमको करना है।
3: बहुत,
4: और जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही कॉन्सिक्वेंस।
3: फरियाद नहीं करना है, याद करना है, और प्रॉब्लम किसी भी फॉर्म में आए वो हमारे ट्रांसफॉर्म होने के तरीका बन सकता है। बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या माँ का जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव प्यार बच्चों को इंडिपेंडेंट बनने से रोक सकता है? आइए इस बात को समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, क्या माँ का बहुत ज्यादा प्यार आपको पाहिज बना सकता है? ये मेरे दिमाग में इसलिए सवाल आया, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मिड 40s में है, शादीशुदा है, और आज भी वो माँ के बताए हुए रास्ते पे चलती है। अगर माँ ने कहा उठो तो उठना है और बैठो तो बैठना है, यहाँ तक कि अगर उनको वजन भी लूज करना है तो उनकी माँ अगर बोलती तुम्हारा वजन बढ़ गया तभी वो वजन लूज करती है। तो आई थिंक माँ की बात सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो इतनी उनपे डिपेंडेंट हो गई है कि वो खुद की जिंदगी जो है वो अपने हिसाब से नहीं जी पा रही है। मेरा उसकी जिंदगी में दखल अंदाज करने का कोई मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मैं किस तरह उसको ऐसा ये बोलूं कि देखो डिपेंडेंट होना अच्छी बात नहीं है, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होना सीखो जिससे वो बुरा भी नहीं माने। मैं क्या बोल सकता हूँ उसको?
4: ज्यादा प्यार तो कभी खराब होता ही नहीं है। प्यार तो जितना मर्जी मिले अच्छा है, इसलिए हम परमात्मा के लिए भी कहते हैं वो प्यार का सागर है
3: जी।
4: तो प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी वो प्यार होता ही नहीं है, वो अटैचमेंट होती है
3: जी।
4: प्यार हमेशा आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, अटैचमेंट आपको डिपेंडेंट बनाती है। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। जो बात आप कह रहे हैं वो इमोशनली डिपेंडेंट है अपने मदर के ऊपर, वो ट्रू लव नहीं है। ट्रू लव में क्या होता है, आप जो उनके मदर है वो उनको वो गाइडेंस देंगे जो उनके भले के लिए होगा, चाहे उसमें उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन वो चीज उनको एम्पावर करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, माँ उसको एक दो साल तक गोद में रखती है, लेकिन फिर उसको छोड़ती भी है नीचे। वो जैसे उसको नीचे छोड़ती है तो वो नीचे नहीं जाना चाहता, मतलब वो रोता है। आप हर छोटे बच्चे को देखेंगे वो कहेगा नहीं मुझे गोद में उठा लो, लेकिन फिर भी माँ उसको छोड़ती है। वो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करता है, उसको पता है कि वो
3: गिरेगा
4: रोएगा, थोड़ी चोट भी लगेगी, लेकिन एज अ मदर आप अब अपने बच्चे को डिपेंडेंट तो नहीं बनाना चाहते ना। ये फिजिकल बात है, फिजिकल रीति से आपको पता है कि भले गिरेगा चोट लगेगी लेकिन कम से कम अपने पैरों पर
3: खड़ा हो जाएगा
4: चलना सीखेगा। ऐसे ही एक पेरेंट का रोल है कि वो फिजिकली इंडिपेंडेंट भी बनाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनाए, इमोशनली इंडिपेंडेंट भी बनाए।
3: फाइनेंशियल और फिजिकल तो शायद कर लेते हैं,
4: वो तो हम करते हैं,
3: इमोशनली हम अटैच्ड ही होते हैं,
4: हम अटैच्ड होते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाते कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है। एक्चुअली एक समय के बाद पेरेंट को बच्चे के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या जिंदगी में गिरकर दोबारा संभलना ही हमें वो इम्पोर्टेंट लेसन सिखाता है जो कोई और नहीं सिखा सकता? आइए इस बारे में समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, जब घर में दो बच्चे होते हैं ना, मेरी दो बेटियां हैं, तो पेरेंटिंग का तरीका तो आपको एक ही आता है। तो मुझे याद है जब मैं अपनी बड़ी बेटी को साइकिलिंग सिखा रहा था तो मैंने उसको कहा देखो गिरोगी चोट आएगी, और जब तक चोट नहीं आएगी और जब तक तुम अपना चोट के बाद खुद साइकिल उठा के वापस चलाना नहीं सीखोगे तब तक तुम साइकिलिंग नहीं सीखोगी। तो उसको लगता था मैं टफ फादर हूँ, लेकिन वो साइकिल चलाना सीख गई। इसी तरह स्विमिंग भी उसने सीखा, बहुत कुछ सीखा। अब छोटी बेटी के साथ जब मैं सेम चीज़ ट्राई करता हूँ वो काम नहीं कर रहा। वो कहती है मुझे गिरना ही नहीं है, मुझे चोट लगानी नहीं है, मुझे नहीं सीखनी साइकिलिंग, मुझे नहीं सीखनी स्विमिंग। तो समटाइम्स पेरेंटिंग का तरीका तो आपको एक ही आता है भाई, यही आपने सीखा यही आप आगे सिखा रहे हो, लेकिन जब दो बच्चे अलग हो और जो पहले के साथ काम कर रहा है वो दूसरे के साथ काम नहीं कर रहा, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ स्किल्स ऐसे हैं, ये एग्जांपल्स तो मैंने ऐसे दिए, लेकिन कुछ स्किल्स ऐसे जो होने चाहिए उनमें, कैसे सिखाएं?
4: नब्स देखनी पड़ती है, जैसे डॉक्टर नब्स देखता है। आप देखिए कई बार बीमारी सेम होती है लेकिन फिर भी दवाई अलग होती है।
3: हाँ,
4: क्योंकि कोई की कैपेसिटी ज्यादा है, फिजिकल कैपेसिटी भी आबिक है। सेम बीमारी में डॉक्टर दोनों पेशेंट को सेम दवाई नहीं देता है। एज अ डॉक्टर आप भी पहले नर्व्स देखते हैं उस व्यक्ति की और फिर उस अनुसार उसको ट्रीटमेंट और उस अनुसार उसको दवाई देते हैं। ऐसे दोनों बच्चे सेम नहीं होते हैं क्योंकि दोनों डिफरेंट सोल हैं, दोनों अलग पर्सनालिटी संस्कार लेकर के आते हैं। इसलिए कभी कभी पेरेंटिंग का तरीका जो सेम है वो तरीका ये होता है कि दोनों के प्रति एक्सेप्टेंस, दोनों के प्रति रिस्पेक्ट, दोनों के प्रति लव, वो तो सेम ही रहता है। लेकिन हो सकता है कि कोई एग्जांपल किसी को बेटर हेल्प करता है, कोई किसी को हेल्प करता है। वो फिर उस समय पर आइडेंटिफाई करके जो बच्चे की पर्सनालिटी है क्या चीज इसको मोटिवेट करती है। कभी कभी किसी बच्चे को थोड़ा स्ट्रांग भाषा मोटिवेट करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी किसी बच्चे को ना खाना वेस्ट कर रहे हो तो हम सोचते हैं कि बहुत गरीब इनको दिखाएंगे, बहुत वॉर की सीन इनको दिखाएंगे, तो इनको उस चीज की
3: उसको बुरा लगेगा
4: और वैल्यू हो जाएंगे। और कई बार उल्टा भी हो जाता है, वो बच्चा कहता है तो मैं क्या करूं,
3: मना
4: इसमें मेरी क्या गलती है, आप मुझे गिल्ट क्यों फील करा रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड कि उस बच्चे को क्या मोटिवेट करता है एंड टेक इट फॉरवर्ड।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

मुझसे ना हो पाएगा। कौन बोला

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पेरेंट्स अपने बच्चों की वीकनेसेस पर बिना प्रेशर और गुस्से के काम रहकर कैसे काम कर सकते हैं, आइए इस बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: बहुत अच्छी बात आपने कही कि कभी कभी हम करने कुछ जाते हैं और वो उल्टा पड़ जाता है। तो ऐसे केस में जैसे आपने, अगर बच्चा जूठा खाना छोड़ रहा है और आप उसको बताना चाहते हैं कि लोगों के पास खाने को नहीं है और आप जूठा छोड़ रहे हैं, क्या किया जाए? मुझे दो दोस्त मिले थे, मुझे याद है, एक ने, एक माँ थी, उसने कहा था मैं उसको ले जाके गरीब बच्चों को वो डोनेट करवाती हूँ। अब रात को अगर वो खाना बच्चा खा ही रहा है 11:30 बजे तो कहाँ जाके हम करेंगे। और दूसरी थी, वो बोलती है मैं फ्रिज में रख देती हूँ, बोले यही खाना है तो खाओ, कल खाना नहीं मिलेगा। व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ हैंडलिंग सच सिचुएशंस?
4: द बेस्ट वे एक्चुअली एट होम इज पेरेंटिंग का जो बेस्ट वे होता है इज बाय एन एग्जांपल, मोर देन थ्योरी स्टोरी टीचिंग। जो छोटा बच्चा देखता जाता है ना, वो सुनता बाद में है, समझता बाद में है, वो देखता है। और सबसे ज्यादा उसका जो फेथ है और जो ट्रस्ट है वो उसके पेरेंट पर होता है। बाकी सबको तो वो बाद में जानेगा, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे उसके कोई बाद में रोल मॉडल बनते हैं, चाहे इवन विजडम है, ऑल ऑफ दैट कम्स मच लेटर। द फर्स्ट इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस पेरेंट का होता है। एंड समटाइम्स आई फील कि पेरेंट वो नहीं कर रहा होता, पर वो चाहता है कि बच्चा करे।
3: लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट कर रहे होते हैं, वो जूठा नहीं छोड़ रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो संस्कार कहीं ना कहीं से बच्चे में आ गए, तो क्या बोलें?
4: मतलब बहुत करके तो अगर पेरेंट्स कर रहे हैं तो बच्चे फॉलो करते हैं। इन केस अगर नहीं करते हैं तो उस समय आपको याद दिलाना है कि इस बच्चे की इतनी सारी विशेषताएं हैं, ये एक कमजोरी है। बच्चे को रिजेक्ट नहीं करना है,
3: बहुत जरूरी है।
4: देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन एक्टर एंड एक्शन।
3: वाह, क्या बात।
4: हम किसको रिजेक्ट करते हैं? बच्चे को। आप ऐसे करते हो, पेरेंट्स को होता है कि मुझे ना बच्चे को परफेक्ट बनाना है, तो उसकी कॉन्शियसनेस में उसकी विशेषताएं कम होती हैं। एवरी लिटिल थिंग दैट ही इज नॉट डूइंग और शी इज नॉट डूइंग वेल, वो पकड़ के रखे होते हैं। इंटेंट में प्योरिटी है कि ये सब तो ठीक ही है, ये जो थोड़ा बहुत ठीक नहीं है ये हमें ठीक करना है, पर अवेयरनेस में उसकी कमी है, तो वो कॉन्शियसनेस होने से नेगेटिव एनर्जी जाती है और बच्चे को रिजेक्शन मिलता है कि मैं गलत हूँ। किसी भी चीज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्वमान होना बहुत जरूरी है, वो पावर का काम करता है। जैसे आप भी सुना रहे थे ना, अभी कुछ दिन पहले आप मिले होंगे किसी को, उन्होंने कहा कि आप बोलो आई एम रनिंग, आपके पैर में तकलीफ है, आप चल भी नहीं सकते हैं।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: और वो आपको क्या कह रहे हैं? आई एम रनिंग, विच मीन्स जो है नहीं हम वो सोच रहे हैं। इसी प्रकार से वो बच्चा जो है नहीं लेकिन हम वो देख रहे हैं।
3: सही बात है।
4: जो आप उनको बनाना चाहते हैं, ये बच्चा काइंड है, ये बच्चा कंपैशनेट है, ये बच्चा केयरिंग है, ये बच्चा गिविंग है, ये बिल्कुल खाना वेस्ट नहीं करता है, एंड यू थिंक ऑफ द बेस्ट, और आप उनको उस चीज के बारे में अवेयर कराते हैं जो उनकी क्वालिटीज हैं, उससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, एम्पावर्ड फील करते हैं। फिर थोड़ा बहुत जो है आप उनको कहते रहिए, एक बार दो बार, धीरे धीरे धीरे धीरे, संस्कार बदलने में टाइम लगता है पर वो बदल जाएगा। कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि जो चीज इस साल नहीं हो रही थी वो नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिक हो जाती है, बिकॉज वो चीज उनको क्लिक हो जाती है। सो पेशेंस, पेरेंटिंग में पेशेंस बहुत जरूरी है।
3: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है कि जब हर तरफ से मन भर जाए और किसी चीज में दिल ना लगे तब क्या करना चाहिए?
3: ये भरे हुए मन की निशानी नहीं है,
2: ये खाली मन की निशानी
3: है। देखो, दो चीजें होती है कि कोई भी चीज आपको डिजायर नहीं है,
2: हाँ।
3: आप डिपेंडेंट नहीं है, आपका मन उसके ऊपर खुशी के लिए डिपेंडेंट नहीं है, वो अलग चीज है कि आप अंदर से भरे हुए हैं। और एक है कि आपका मन ही नहीं लग रहा है, आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, आपको किसी से मिलने और कुछ करने की दिल ही नहीं हो रही है, आप अंदर से खाली है। हो सकता है लोनली है, दर्द में है, उदास है, परेशान है, इट इज नॉट अ गुड साइन। तो अगर ये थोड़ा बहुत है तो आप अच्छा संग, चाहे वो व्यक्ति का है, चाहे वो नॉलेज का है, चाहे वो मेडिटेशन का है, आप उससे अपने को एम्पावर कर सकते हैं, भर सकते हैं। और अगर आपको लगता है ये ज्यादा, बहुत ज्यादा है, ज्यादा मना डेली स्केड्यूल में भी वो इंटरफेयर कर रहा होता है, उठ ही नहीं पा रहे हैं, बेसिक चीजें भी, नहाने में बहुत टाइम लग रहा है, तैयार होने में बहुत टाइम लग रहा है, किसी भी मीटिंग पर टाइम पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, माने आपके डेली स्केड्यूल में भी वो चीज अगर बाधा डाल रही है, देन मे बी इट इज अ टाइम टू सी अ डॉक्टर आल्सो समटाइम्स। एक भरा हुआ व्यक्ति जो होता है वो हर छोटी चीज भी खुशी से करता है।
2: सही बात।
3: वो इतना रेडिएट कर रहा होता है, इतना ओवरफ्लो कर रहा होता है कि उसके साधारण कर्म के अंदर भी यूनिकनेस होती है।
2: बिल्कुल,
3: उसके अंदर भी एक अट्रैक्शन होती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है श्रेया घोष से, बैंडल यानी कि बंगाल में है। वो लिखती हैं कि सिस्टर, क्या आप प्लीज बता सकती हैं कि मैं अपना फोकस कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ती हूँ और उसके बाद मेरा ध्यान भटक जाता है, फालतू बातें सोचने लगती हूँ, जैसे स्कूल में क्या हुआ, ट्यूशन में क्या हुआ, मम्मी ने क्या बोला, फ्रेंड्स ने स्कूल में मेरे साथ कैसा बिहेव किया, वगैरह वगैरह।
2: फोकस और कॉन्सेंट्रेशन अगेन एक स्ट्रॉन्ग माइंड की निशानी है। जब आपका मन शक्तिशाली है, शक्तिशाली मन किसको कहते हैं, मुझे जो सोचना है, जितना समय सोचना है, अपने मन को जहाँ लगाना है मैं लगा सकता हूँ।
1: जी,
2: मेरा मन मेरे कंट्रोल से चलता है।
1: जी,
2: कमजोर मन का क्या हो गया, वो आपको कंट्रोल कर रहा है।
1: हाँ।
2: कह रहे हैं मेरा मन।
1: हाँ।
2: मेरा मन कह, तेरा मन तो नहीं कहते ना, मेरा मन कहते हैं।
1: हाँ।
2: तो मैं मन का मालिक होना चाहिए।
1: हाँ।
2: लेकिन मन मेरा मालिक बन गया।
1: सही बात है।
2: अब उसको जहाँ जाना है, जो सोचना है, वो कर रहा है।
1: वो कटी पतंग की तरह कहीं भी जा रहा है,
2: कहीं भी जा रहा है। एंड यू लूजिंग टाइम, यू लूजिंग फोकस, यू लूजिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब अपने मन को कैसे शक्तिशाली बनाए वो देखते हैं, दो तीन चीजें। एक, आपका मन क्योटिक रहेगा अगर आप बहुत इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं।
1: जी,
2: वो नॉइजी हो जाएगा, वो नहीं कंसंट्रेट कर सकता। ये चीज बहुत समझने की, हमें लगता है हमें बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है सब कुछ पता होना चाहिए, तब हम बहुत इंटेलिजेंट होंगे। बट टू बी वेरी फ्रैंक, आप बहुत इन्फॉर्मेशन लेकर के उस मन को प्रोसेस नहीं कर पाता।
1: सही बात है।
2: वो भी एक मशीन की तरह है, उसको भी उतनी इन्फॉर्मेशन देना होता है, जैसे जैसे डाइजेशन है, पेट है। आप कितना भी हेल्दी खाना खिला दो,
1: सही बात है, लेकिन अगर ज्यादा खाया तो फिर वो तो इंडिजेशन तो होगा ही।
2: हाँ, मैंने जैसे कोई कितनी भी अच्छी चीज हो, पानी है,
1: सही बात है,
2: बहुत अच्छा है,
1: लेकिन ज्यादा पीने पे बीमारी होगी,
2: ज्यादा पीने पर बीमारी होगी। सिमिलरली फॉर इन्फॉर्मेशन, आप देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, गाने हैं, फिल्म्स हैं, न्यूज है, इतना इतना इतना अंदर ले रहे हैं, द माइंड डजंट गेट इनफ टाइम टू प्रोसेस,
1: राइट,
2: दैट्स व्हेन थोड़ी देर के बाद वो उस प्रोसेस करने में चला जाता है।
1: सही बात।
2: जो आपने सुना है वो उसको डाइजेस्ट करने में, उसको प्रोसेस करने में चला जाता है, दैट इज वन थिंग। सेकंड चीज है, थोड़ा मी टाइम निकालना चाहिए टू प्रोसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो आपके फ्रेंड्स ने कहा या किसी ने कुछ कहा। कोई चीज अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप अगर उसको एनालाइज करके, उसको वर्क करके, उसको क्लोजर नहीं देते
1: तो चलता रहेगा,
2: तो वो चलता रहेगा, फिर वो पास्ट बन जाता है। फिर हम कहते हैं ना कि 80% टाइम तो हमारा मन या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। क्यों? आपने उसी दिन उसको लेट को नहीं किया।
1: जी।
2: उसको क्लोजर नहीं दिया, उसको फुल स्टॉप नहीं लगाया, आपने हीलिंग नहीं करी। सम 20 मिनट्स, 10 मिनट्स जर्नलिंग करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा मी टाइम। दिस इज जस्ट अ बज वर्ड, मी टाइम। है क्या मी टाइम? मी टाइम इज बेसिकली स्पेंडिंग दैट टाइम विद यू एंड हीलिंग योर सेल्फ। कुछ भी नेगेटिव है, कुछ भी एक्स्ट्रा है, उसको आप करें, तो आप प्रेजेंट में रह पाएंगे और फोकस कर पाएंगे। एंड थर्ड, ट्राई एंड स्टडी इन द मॉर्निंग।
1: हाँ, ये आपने पहले भी कहा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं।
2: नहीं, बच्चे थके हुए मन से पढ़ रहे हैं।
1: हाँ, सुबह सुबह आपकी एनर्जी भी हाई होती है, डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं, बहुत खूबसूरत समय होता है।
2: थका हुआ मन कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगा? थका हुआ मन मना, आप सुबह उठे, समझो आप लेट उठे, फिर 6-8 घंटे तो आजकल बच्चे क्या करेंगे, ये देख लिया, फ्रेंड्स के साथ चले गए, स्कूल कॉलेज में चले गए, अब रात को 8 बजे पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं।
1: मन थका हुआ,
2: मन थका हुआ है, थका हुआ मन फोकस और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है।
1: सही कह रही।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का, उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया सिस्टर। गुड मॉर्निंग, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने गुस्से में एक दूसरे को कुछ बोल दिया, कुछ मैंने भी गलत बोल दिया, कुछ उसने भी गलत बोल दिया, वो हर्ट हो गई है और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। किसी और के फोन से किसी तरह उससे बात हुई तो बोलती है कि 1 साल वेट करो। अभी हम दोनों अलग रह रहे हैं, मेरा घर टूटने से मैं बचा सकूं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? प्लीज हेल्प मी।
4: इसीलिए हम कई बार कहते हैं अगर गुस्सा आ भी जाए ना, बोलना नहीं चाहिए। बोलने में क्या होता है, आपने फिर रियलाइज किया, आपने अपोलोजाइज भी कर लिया। सामने वाला जब बहुत कमजोर होता है तो उसको पकड़ लेता है, रिपीट करता रहता है, हर्ट क्रिएट कर लेता है, ब्लेम आपको करता है। एक्चुअली उस व्यक्ति ने तो एक बार कहा फिर सॉरी भी कह दिया, तो बहुत ज्यादा मेजर मिस्टेक उसकी नहीं है। पर अगर कोई इमोशनली वीक है तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है, वो वही चीज रिपीट करता रहता है और जख्म बना लेता है। अब उन्होंने जख्म बना लिया, आपने सॉरी भी कह दिया, अब हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि उनके जख्म, हर जख्म हील होता ही है, कोई समझ से हील होता है, कोई समय से हील होता है।
3: क्या बात, बहुत बढ़िया, कोई नॉलेज से कोई टाइम से,
4: होना तो समझ से चाहिए। ये क्या बात हुई कि 1 साल वेट करो? जो चीज 1 साल में ठीक करनी है वो 1 सेकंड में भी ठीक हो सकती है, 1 साल में तो वो जख्म और गहरा भी हो सकता है, लेकिन अभी वो उनके ऊपर है। समझ तो क्या कहती है, मेरी साड़ी पे दाग लगा, मैं 1 साल बाद थोड़ी ना धोऊंगी, दाग लगा है ना, तो हम तो चाय भी कप रख करके कहेंगे पहले धोए फिर पियेंगे, नहीं तो ये गहरा हो जाएगा।
3: बिल्कुल।
4: तो समझदार तो क्या करेगा, अच्छा हो गया ना, फुल स्टॉप, मैंने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, फुल स्टॉप, बात करना शुरू करो, गांठ को तोड़ करके फेंको। लेकिन अगर समझ नहीं है तो समय हीलिंग करता है, टाइम इज द बेस्ट हीलर कहते हैं। टाइम हीलिंग कैसे करता है, वो चीज मर्ज होने लग जाती है, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू सीन्स लाइफ की होती है, तो वो पीछे वाले का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं उनके लिए, आप उनको अच्छा वाइब्रेशन भेज सकते हैं, आप परमात्मा से पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर के आप उनको सेंड कर सकते हैं जो उनकी हीलिंग फास्ट करेगा। तो आप डेडिकेटेड टाइम फिक्स करें, 10 मिनट्स 15 मिनट्स, आप मेडिटेशन में बैठे, उस मेडिटेशन में आप बोले कि मैंने आपको दुख दिया, मेरा भाव नहीं था, आई एम वेरी सॉरी, अब मैं परमात्मा से हीलिंग एनर्जी लेकर आपको भेजता हूँ, क्योंकि मेरी भावना है कि आप खुश रहे।
3: क्या बात, बहुत बढ़िया,
4: मेरे लिए आपकी खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बस अभी इतना ही चाहता हूँ कि आप खुश रहें, ये मेरी अंदर की शुभ भावना है। मॉर्निंग इवनिंग आप ये करते जाए, आपका वाइब्रेशन उनको हील करेगा, और वो हीलिंग हो जाएगी तो वो जितना समय लगना उससे बहुत कम समय में वो ठीक हो जाएंगे।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क.

0: with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. और अगर तुम्हारा ब्रेन फिलहाल बफरिंग पर पहुंच चुका है, डोंट यू वरी, हम दोनों मिलकर उसे रीस्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मेरा ब्रेन भी बफर करता है मॉर्निंग में. व्हेदर यू आर ड्राइविंग टू वर्क, ड्रॉपिंग द किड्स ऑफ टू स्कूल, प्रिटेंडिंग टू वर्क फ्रॉम होम, या फिर अपना टिफिन बॉक्स पैक कर रहे हो, या फिर अभी तक बेड से ही नहीं उठे हो, या अभी पूरा ब्रेकफास्ट वर्कआउट कर गुड बॉय या गुड गर्ल बनकर बैठे हुए हो, जो कुछ भी कर रहे हो ना, अगले कुछ घंटों तक मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ. मैं बोलूँ तो प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं, थोड़ी सी वेदर की बात करने वाले, थोड़ी सी गॉसिप, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा मिर्ची, एंड बॉलीवुड के मिर्चीदार बैंगर्स भी मैं तुम्हारे लिए प्ले करने वाले हूँ. सो टर्न इट अप, स्टे विद मी एंड लेट्स मेक योर मॉर्निंग्स अ लॉट मोर मिर्चीदार. और हाँ, तुम मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. टेल मी What's up with you this morning? And now let's head straight into Mirchidar Bangers. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और चलो अब थोड़ा सा टाइम ट्रैवलिंग कर लेते हैं। आज के दिन क्या हुआ था हिस्ट्री में, लेट्स फाइंड आउट। 1897 में बोस्टन में ट्रेमोंट स्ट्रीट सबवे ओपन हुआ था, नॉर्थ अमेरिका का फर्स्ट अंडरग्राउंड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। फिर 1939 में नाजी जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। 1952 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे की द ओल्ड मैन एंड द सी लाइफ मैगजीन में पूरी पब्लिश हुई। 1983 में सोवियत फाइटर्स शॉट डाउन कोरियन एयरलाइंस फ्लाइट 007, किलिंग ऑल 269 पीपल ऑन बोर्ड, अ ट्रेजिक कोल्ड वॉर इंसिडेंट। 1985 में टाइटैनिक का रैकेज अटलांटिक के ओशन फ्लोर पर लोकेट हुआ। एंड फाइनली 2004 में रशिया के बेसलन स्कूल सीज की शुरुआत हुई, अ डेविस्टेटिंग ट्रेजेडी। हिस्ट्री काफी हैवी है एंड नोइंग इट कीप्स अस कनेक्टेड टू द वर्ल्ड वी केम फ्रॉम। तुम्हारे थॉट्स और रिक्वेस्ट तो मुझे भेज सकते हो इंस्टा पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर 9033 मिर्ची इज माई नंबर 9033647244। अभी स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Tera kya hoga, Kalia?
4: Sardar, main aapka namak khaya, Sardar.
3: Ab Mirchi ka.
5: Radio Mirchi, it's hot.

Radio Mitchie, New York. It's hot.

0: ही जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर। अब वेदर चेक का टाइम आ चुका है, बिकॉज बिफोर यू स्टेप आउट लेट्स फाइंड आउट वेदर आज क्या कह रहा है। राइट नाउ इट्स 71 डिग्रीज फारेनहाइट एंड क्लाउडी, लेकिन फील हो रहा है 74 डिग्रीज फारेनहाइट तक। ह्यूमिडिटी इज बेसिकली गिविंग अस अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा हीट टुडे एंड पार्टली क्लाउडी स्काइज आर एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड टिल 2 to 3 PM एंड बाय 4 PM रेन इज एक्सपेक्टेड। सो इफ यू आर हेडिंग आउट एट दैट टाइम अम्ब्रेला को अपने साथ कैरी करना बिल्कुल नहीं भूलना है। टेम्परेचर वाइज टुडे रेंजेस फ्रॉम 70 to 87 डिग्रीज फारेनहाइट विथ फील्स लाइक रेंज फ्रॉम 73 to 89 डिग्रीज फारेनहाइट। एंड यस, आज का हाई इज अ बिट वार्मर देन यस्टरडे विच टॉप्ड आउट एट 78 डिग्रीज फारेनहाइट। एंड वी हैड अराउंड 1 millimeter ऑफ रेन इन द लास्ट 24 आवर्स एंड वी कुड सी अराउंड 15 millimeter इन नेक्स्ट 24 आवर्स। सो बेसिकली आज क्लाउड्स ने तुम्हें घेर रखा है, थोड़ी सी देर बाद टेम्परेचर वार्म हो जाएगा, लेकिन अभी रेन इज इनकमिंग। एंड बाहर निकलोगे तो लेयर के प्लेयर बनकर बाहर निकलना, वेयर योर SPF 50+++ एंड साथ साथ में कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। एंड ऑफ कोर्स मिर्चीदार बैंगर्स सुनने के लिए मिर्ची की वाइब्स बनाकर रखो। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और अब अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स जानने का टाइम आ चुका है ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले यूएस वाइस प्रेसिडेंट जे डी वैंस ने मेन में एक पॉलिटिकल इवेंट के दौरान कनाडा को स्टेट कह दिया, फिर इमीडिएटली खुद को करेक्ट भी किया और करेक्ट करते हुए कहा सॉरी फ्रूडियन स्लिप एंड फिर ऐड किया दैट वाज एक्चुअली एन एक्सीडेंट। नाउ इट वाज अ प्लान्ड जॉइंट एम्फिबियस लैंडिंग एक्सरसाइज बिटवीन द यूएस एंड साउथ कोरिया हैज बीन कैंसल्ड विद सोल्स मरीन कोर साइटिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन यूएस फोर्सेज लिंक्ड टू द ईरान war. The allies are reportedly discussing whether the drills can resume. And lastly, Bloomberg reports Apple is planning a new Mac Mini, potentially ahead of its September event. The company has reportedly tested versions with M5 and M6 chips, though it's not clear which one will make the final cut. Mac Mini is releasing after almost 2 years. And मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। This was Mirchi Hour का 3। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है Mirchi Priz, that is MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 Mirchi, that's 9033647244। Stay tuned and stay hot।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vidu la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Yeah, Jadeep.
2: हाँ जी.
3: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना. ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था.
2: हाँ जी.
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो.
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं.
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: मैं यही कह रहा हूँ. तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के.
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेंगे.
3: यूज करो, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा.
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको.
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है.
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की.
3: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा.
2: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा.
3: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस. ये तो है भी बड़ा रिस्की. ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च जला ली, ठीक है. ये रहा थोड़ा, नहीं खुल रहा. पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा.
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना, तभी तो खुलेगा.
3: हथौड़ा जोर से मार दो, सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी. अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा. चीजें बेचते हो, गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ. 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा. कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो. आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम. जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही.
2: तो कहाँ पे है तू?
3: बैंक में.
2: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
3: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर. अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने.
2: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
3: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप.
2: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर. तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो.
3: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ. ठीक मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: पूरा जर्सी जानता है, यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: O chanati kuri, o chanati kuri.

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और आज का बर्थडे रोल कॉल इज लुकिंग मोर स्टार स्टडेड देन एनी शादी का गेस्ट लिस्ट यार. आज है सितंबर की पहली तारीख और अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है, सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू. मे योर केक भी एक्स्ट्रा चॉकलेटी या फिर कोई और फ्लेवर जो तुम्हें पसंद हो और तुम्हें गिफ्ट्स वो मिले जो तुम्हारे मन को पसंद हो. एंड मे नोबडी आस्क यू कि आज कितने साल के हो गए हो, बिकॉज यार शेयरिंग अ बर्थडे केक इज नॉट द सेम एज शेयरिंग योर एज. फर्स्ट अप, आज के दिन है जेंडेया का बर्थडे, द अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस यूफोरिया और ड्यून स्टार की स्टार, जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड से शादी भी की है. देन देयर इज जंगकुक फ्रॉम बीटीएस, ग्लोबल के-पॉप सुपरस्टार. वी ऑल्सो गॉट द लेजेंडरी सिंगर ग्लोरिया एस्टेफान, कॉमेडी आइकन लिली टॉमलिन एंड बैरी गिब, को फाउंडर एंड लेजेंडरी वॉइस ऑफ द बीजीज. एंड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टीवी एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर फिल, बॉक्सिंग लेजेंड Rocky Marciano, and Formula One racer Carlos Sainz Jr. So whether today is your birthday or you're just here for your celebrity roll call, make today count. Send me your birthday shout outs apne liye, apne dost ke liye. Request bhejo WhatsApp पर 9033647244, that's my number. And Instagram or X पर मेरा handle है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. Stay tuned and stay hot. गली

0: रिच और सिकी स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Priscilla with you. Sun rahe the Mirchi Mornings. Aur ab sunne wale ho gold car latest rate update.
2: Raj Jewels wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,390. $4,390 per troy ounce gold ki price trade kar rahe hain. Silver also trending higher at $65. $65 per troy ounce aaj silver trade kar rahi hai. हालांकि गोल्ड $5,600 एंड सिल्वर $120 पर ट्रायउंस की पीक टच कर चुके हैं और इस समय करेक्शन के साथ गोल्ड $4,390 एंड सिल्वर $65 पर ट्रायउंस ट्रेड कर रहे हैं। दिवाली पुष्य नक्षत्र इससे पहले गोल्ड वापस अपवर्ड एग्रेसिव ट्रेंड ले, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें rajjewels.com पे, जहां पे 0% इंटरेस्ट पे, जीरो फाइनेंसिंग, जीरो डाउन पेमेंट के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे सकते हैं rajjewels.com की टीम को। कैसे? आइए लाइफ के प्रेशियस पल्स सेलिब्रेट करें एट rajjewels.com। थैंक यू।
1: एंड देयर यू हैव इट, लेटेस्ट गोल्ड रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: जी
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की?
0: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन की बात और सी।
0: पर 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Let's find out देश और दुनिया में क्या चल रहा है. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में और Mirchi Mornings. सबसे पहले इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी शेयर्ड अ सेल्फी वीडियो सेलिब्रेटिंग 7.8 जीडीपी ग्रोथ इन क्वार्टर वन ऑफ FY27 एंड अर्ज्ड पीपल टू अवॉइड फॉरेन ट्रैवल एंड बाइंग गोल्ड, सेइंग इंडिया इज मूविंग अहेड डिस्पाइट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट. नंबर टू परफॉर्मर लॉस एंजलिस गैंग मेंबर ड्वेन कैफे डी डेविस हैज बीन फाउंड गिल्टी इन द 1996 मर्डर ऑफ रैपर टुपाक शकूर, नियरली 30 ईयर्स आफ्टर टुपाक वॉज किल्ड इन लास वेगस. Davis was accused of organizing the killing following a confrontation involving his nephew and members of Tupac's entourage. A long-running case, a major verdict, and a reminder that justice can sometimes take very, very long route. And lastly, from sports, Lionel Messi has retired from international football. After that, his wife Antonella Roccuzzo shared a beautiful tribute, posting pictures with their sons, Diego, Matteo and Ciro, and saying how proud she is of him. Because behind every GOAT moment, there often is a family supporting the man. And that's it for Mirchi Awaka 3. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. Mujhse connect karo. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. And WhatsApp number hai 90336472444. Now let's head into Mirchi Dar Bangers. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Kabana. Burka, burka. Na vjet bala burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Hello. Anshika? ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
2: हाँ जी,
3: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
2: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
3: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
2: नहीं, कोई बात नहीं।
3: तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
2: संतोष क्या करता है? व्हाट डू यू
3: डू? दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: ये पका।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज के सितारे क्या कह रहे हैं पता करने का टाइम आ चुका है। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रिसिला, ये है मिर्ची मॉर्निंग।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी कि मेष राशि, आज स्टबन लोगों से आर्ग्यूमेंट अवॉइड करो, मूड खराब करने का कोई फायदा नहीं है, स्पेशली जब फाइनेंशियल गेन्स का सीन पॉजिटिव है, पैसा आ रहा है, पेशेंस भी आ जाएगा। लकी कलर इज स्टील, लकी नंबर इज 7। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, टुडे इज गिविंग सेल्फ केयर एनर्जी, थोड़ा सा रिलैक्स करो, बॉडी का ख्याल रखो, फाइनेंशियल गेन्स जो है वो मॉडरेट है और सीनियर्स की एडवाइस काम आ सकती है, मतलब बॉस की बात कभी कभी सुन लेनी चाहिए। आज का लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर 24। जेमिनी यानी मिथुन राशि, हेल्थ को प्रायोरिटी दो, स्पेशली इफ यू मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर। इनकम के एफर्ट्स दो लुक प्रॉमिसिंग, सो हसल करो, बट बॉडी को सीन पर मत छोड़ो। लकी कलर फॉर यू इज कोरल एंड लकी नंबर इज 11। कैंसर यानी कर्क राशि, इन्फ्लुएंशियल पीपल आज तुमको सपोर्ट कर सकते हैं, मोरल बूस्ट होगा और फाइनेंसिस भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली यूनिवर्स कह रहा है बेब यू गॉट दिस। लकी कलर फॉर यू इज एमरल्ड, लकी नंबर इज 36। लियो यानी कि सिंह राशि, स्ट्रेस और वरी से टेंशन हो सकती है और अनएक्सपेक्टेड बिल्स आ सकते हैं, बट फाइनेंशियल टास्क्स टाइम पर कंप्लीट होंगे, मतलब बिल आएगा लेकिन पैनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं आने वाला है। लकी कलर फॉर यू इज गोल्ड, लकी नंबर इज 18। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, लो मूड को बीट करने के लिए स्माइल हैंडी रखो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहो, डबल चेक बिफोर यू क्लिक। लकी कलर फॉर यू इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 42। एंड दैट्स राशि जोन पार्ट 1। बाकी की बची 6 राशियों को लेकर पार्ट 2 में अभी हाजिर होती है प्रिसिला। तब तक तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स एंड गो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम एंड एक्स प्रोफाइल्स। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033647244 पर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: यूनिवर्स तुम्हें आज क्या मैसेज दे रहा है पता करते हैं. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज राशि जोन ऑन मिर्ची मॉर्निंग.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: लीब्रा यानी तुला राशि, स्केड्यूल हेक्टिक हो सकता है लेकिन हेल्थ स्टेडी रहेगी. फाइनेंशियल गेन्स भी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं लेकिन डिसिप्लिन में मूव करो. इम्पल्सिव शॉपिंग को थोड़ा सा होल्ड पर रखो. लकी कलर इज पीच. लकी नंबर इज 9. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, सोशल सिचुएशंस में सडन इम्पल्स या स्टबर्ननेस से बचने की जरूरत है. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिल्कुल क्लियर रखो. जो पैसा है उसको मिस्ट्री नॉवल मत बनाओ. लकी कलर फॉर यू इज इंडिगो. लकी नंबर इज 27. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, पर्सनल मैटर्स मेंटल पीस को चैलेंज कर सकते हैं लेकिन बिजनेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व होने के चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग है. दिल बोलेगा हड़प्पा और ड्रामा, दिमाग बोलेगा लेट्स हैंडल द स्प्रेडशीट फर्स्ट. लकी कलर फॉर यू इज क्रिम्सन. लकी नंबर इज 14. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, इमोशंस कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन फाइनेंशियल पिक्चर बेटर हो रही है. सो ब्रीद, नॉट एवरी फीलिंग नीड्स अ रिप्लाई. लकी कलर फॉर यू इज मिंट. लकी नंबर इज 31. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, सीनियर्स की तरफ से वर्कप्लेस प्रेशर थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है और फाइनेंशियल एक्टिविटी और गुड न्यूज तुम्हारा मोमेंटम बूस्ट करने वाली है. बॉस का मूड वेदर की तरह है, फोकस अपने फोरकास्ट पर रखो. लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर. लकी नंबर इज 22. लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस यानी मीन राशि, फाइनेंशियल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है लेकिन लव्ड वंस की लॉयल्टी और सपोर्ट से हैप्पीनेस भी मिल सकती है. समटाइम्स द बेस्ट वेल्थ इज हैविंग योर पीपल इन योर कॉर्नर. लकी कलर इज रोज पिंक. लकी नंबर इज 45. एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. ये है मिर्ची मॉर्निंग्स. जल्दी से जाकर मुझसे कनेक्ट कर लो. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: की जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। मेरी

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: पिक्चर खत्म होने वाली है, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स और मेरे जाने का टाइम शुरू हो चुका है। लेकिन जाने के पहले तुम्हें एक पिक्चर के बारे में बताते हूँ, विच इज 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म अब तक। हनुमान अंश नाम की ये फिल्म, विच इज रिपोर्टेडली मेड ऑन अ शूस्ट्रिंग बजट ऑफ अमाउंट 2 करोड़ रुपीज, हैज रेक्ड इन नियरली 2000% ऑफ प्रॉफिट, मेकिंग इट वन ऑफ 2026's मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म्स। लेकिन ट्विस्ट ये है कि फर्स्ट वीक में इस फिल्म ने काफी स्ट्रगल किया था, लेकिन सेकेंड वीक तक बस इतना ज्यादा बढ़ गया कि एग्जिबिटर्स को एड ऑन करने पड़े शोज, एंड सडनली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में प्रॉपर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मोमेंट था भाई। मीनवाइल धुरंधर 2, जो इस साल की सबसे सक्सेसफुल मूवी थी, उसने 1000% का प्रॉफिट बनाया, एंड दिस मूवी हनुमान अंश नाम की जो मूवी है, इसने 2000% का प्रॉफिट बनाया है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी और मॉरल ऑफ द बॉलीवुड स्टोरी इज कि कभी कभी फर्स्ट वीक में तुम्हारा परफॉर्मेंस बिल्कुल लुल रहता है, लेकिन पिक्चर देखने के बाद लोग जब उसे पसंद कर लेते हैं तो सेकेंड वीकेंड तक पब्लिक बोलती है भाई क्या पिक्चर बनाई है। एंड दैट्स माई क्यू टू से थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर मॉर्निंग्स विद मी। मेरा नाम है प्रिसिला। वेदर यू वर ड्राइविंग टू वर्क, गेटिंग द किड्स रेडी, और सीक्रेटली लिसनिंग व्हाइल प्रिटेंडिंग टू बी मोर प्रोडक्टिव, आई वॉज विद यू। थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ मिर्ची मॉर्निंग से, लेकिन मिलूंगी कल तुम्हें सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक के लिए यू स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप दैट मिर्ची वॉल्यूम अप, क्योंकि आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
3: Mm-mm.

पुरानी जीन्स पर हेलो हेलो, मैं हूँ श्रेया और आज ना पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गानों के साथ बात होगी बेगम मुमताज जेहान दहलवी की। क्या कह रहे हो, नहीं पहचाने? अरे बिल्कुल जानते हो भाई। चलो एक हिंट देती हूँ कि जब भी कोई बला का खूबसूरत लगता है ना तो उसको कॉम्प्लीमेंट में कहा जाता है। क्या बात है, आज तो बिल्कुल मधुबाला लग रही हो। सो यस, आज होगी मधुबाला जी की बातें। शुरुआत करेंगे एक ऐसे काम से जो मधुबाला जी को बहुत पसंद था। जैसे ही शूटिंग खत्म होती थी ना, वो ये काम जरूर करती थी और वो करने से ना उन्हें फ्रीडम महसूस होता था, आजादी लगती थी। क्या था वो काम? अब आपको तो मेरी आदत इतने दिनों से पता ही चल गई, सब कुछ एक बार में नहीं बताती हूँ। सो कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना
3: बना
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: हेलो, ये कमलेश जी?
4: हाँ जी, कौन?
5: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
4: कौन सा पैसा चाहिए तुम्हें?
5: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
4: अरे तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं।
5: देखिए, मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
4: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
5: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए का बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो।
4: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चंदा मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
5: आप नहीं दे रहे फिर?
4: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
5: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
6: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for. Because we feel we're all family. And my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
4: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
6: Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
4: No, not an issue. 750 only?
6: Yes, sir, absolutely.
5: No, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam gheje mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
3: Yep, Murga.
0: Aap sun rahe hain Purani Jeans. श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, वेद इस जमाने की श्रेया। पुरानी जीन्स पे ना आज बात हो रही है मधुबाला जी की। तो मैं बता रही थी कि कैसे उनको एक चीज बेहद पसंद थी, इनफैक्ट वही एक चीज उनको अलाउड भी थी। शूटिंग जब खत्म हो जाती थी तो उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। मधुबाला जी को ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि उन्हें सीधे सेट से घर और घर से सेट जाना है। ऐसे में वो अपना फ्रीडम, अपनी आजादी पता है किस में ढूंढती थी? ड्राइविंग में। उन्हें ड्राइविंग करना बेहद पसंद था, तो हमेशा ड्राइवर को पीछे बैठाती थी और घर का एक लंबा रास्ता लेते हुए वापस जाती थी। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें उनके गानों के साथ, तो बस कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
5: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: ये मधुबाला नाम की किताब कैसे खुली?
1: मेरा मतलब है कि मधुबाला जी की जर्नी कैसे शुरू हुई, अभी बताती हूँ। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया।
0: उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान जी काम करते थे पाकिस्तान में। पेशावर में एक कंपनी थी जिसका नाम था इम्पीरियल टोबैको कंपनी। वहाँ से एक दिन उनकी नौकरी छूट गई, वो अपने पूरे परिवार को लेकर के दिल्ली आ गए। उसके बाद काम ढूंढते ढूंढते मुंबई आए। मुंबई में जब वो काम करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि बॉलीवुड में, यानी तब तो ये इंडियन सिनेमा कहलाया जाता था, वहाँ पर एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत है। अताउल्ला खान जी को ये तो पता था कि उनकी बेबी मुमताज यानी मधुबाला बेहद खूबसूरत है, तो बस वो उनको लेकर के अगले दिन पहुंच गए स्टूडियोज, और वहां पे बेबी मुमताज ने की अपनी पहली मूवी एज चाइल्ड आर्टिस्ट। इस मूवी का नाम था बसंत, वे बैक 1942 में। उसके बाद मधुबाला जी ने कई सारी फिल्मों में काम किया, फुलवारी, पुजारी, राजपुतानी, बहुत सारी। बस यहीं से उनकी जिंदगी में भी ट्विस्ट एंड टर्न भी शुरू हो गए। अभी इनके बारे में बताऊंगी, गानों के उस पार मिलते हैं ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है। चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, वो पहली फिल्म कौन सी थी जिससे मधुबाला जी ने अपने करियर की शुरुआत करी एज लीड एक्ट्रेस? बताओ बताओ। पुरानी जीन्स पर, हाय मैं हूँ श्रेया। यू नो व्हाट, सिर्फ 14 साल की थी वो जब लीड एक्ट्रेस बन गई थी। 14 बोले तो मतलब अगर आप स्कूल में हो तो 8th या 9th क्लास में होगे। और उनके ऑपोजिट एक ऐसे एक्टर थे जो इंडस्ट्री में थी तो बहुत टाइम से, लेकिन एक बड़ी फिल्म की तरह उनकी भी ये पहली फिल्म थी। एंड इट वॉज नन अदर देन राज कपूर साहब। मूवी का नाम था नीलकमल, जिसमें दोनों अपने बड़े बड़े सपने लेकर के मैदान में उतरे थे। अभी तो उस जमाने के और भी बहुत सारे किस्से बाकी हैं, तो जल्दी से गाने सुन करके वापस आओ विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: देख रे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी सी।

0: हल्ला मचाएंगे, धुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा ठम ठम ठम। हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम,
1: मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम।
2: जब भी कोई बहुत खूबसूरत होता है तो कहते हैं ना, आहा क्या मधुबाला लग रही हो। तो आज बस मधुबाला जी की बातें बैक टू बैक श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जींस। हाँ, तो मैं बता रही थी कि एज अ लीड लेडी उनको उनका पहला ब्रेक मिला राज कपूर के ऑपोजिट। ये फिल्म थी बहुत पुरानी, 1947 की, नीलकमल। ये बनाने वाले थे केदार शर्मा साहब। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता है कि राज कपूर के साथ उन्होंने कई सारी फिल्में की हैं। NM केलकर की एक फिल्म आई थी अमर प्रेम, ना ना ना राजेश खन्ना वाली नहीं, बल्कि इसमें थे राज कपूर अगेन पेड अप विद मधुबाला जी। एक फिल्म आई थी मोहन सिन्हा की जिसका नाम था दिल की रानी, इसमें भी राज साहब और मधुबाला जी थे। एक्चुअली में राज कपूर और मधुबाला जी की जो केमिस्ट्री थी इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बिकॉज काफी पुरानी बात है, 1940s और 50s की। आज मैं पता करके आई थी तो आपके साथ शेयर कर ली। आगे कौन कौन से किस्से हैं सब बताऊंगी, वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना
3: बाना
2: मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: हेलो
4: हेलो
5: जयदीप।
4: हाँ जी।
5: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना। ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
4: हाँ जी।
5: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो।
4: मतलब
5: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं।
4: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
5: मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं।
4: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेंगे।
5: क्या यूज करूं, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा।
4: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको।
5: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है।
4: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की।
5: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
4: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा।
5: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च जला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा।
4: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा।
5: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी, अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खोली नहीं रही।
4: तो कहाँ पे है तू?
5: बैंक में।
4: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
5: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर
4: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
5: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
4: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर, तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो।
5: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ। ठीक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: I want to live the story of Madhubala.
1: ये लिखने वाले थे कातिजिया अकबर। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया और आज मधुबाला जी की बातें बैक टू बैक चल रही हैं। सो मैं बता रही थी कि ये जो बुक थी ये मधुबाला की बायोग्राफी थी जो अकबर साहब ने लिखी थी। उसमें ना उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात मेंशन की है। ही सेड कि मधुबाला इतनी खूबसूरत थी, इतनी वाइट थी, उनकी स्किन ऐसे आर पार दिखती थी, एकदम ट्रांसलूसेंट थी कि जब भी वो पान खाती थी, एंड बाय द वे पान खाने की काफी शौकीन थी, तो उनके थ्रोट से, उनके गले से उतरता हुआ पान तक दिखता था। मतलब ये बोलते हुए भी ना मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि काश हमने मधुबाला जी को देखा होता। अच्छा, आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई जरूर उनका जबरदस्त फैन होगा, जैसे मेरी फैमिली में मेरे पापा। और आप क्या, कौन है बताना मुझे। फेसबुक और इंस्टा पे मिल सकते हो RJ श्रेया विद लव, दैट्स RJ SHREYA विद लव, ये है मेरा हैंडल। अभी और भी बातें बाकी, सुबह वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मधुबाला जी सेट पे हमेशा पंक्चुअल।
1: पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। जितने भी लोगों ने मधुबाला जी के साथ काम किया है और कभी उनके बारे में लिखा है तो उनकी पंक्चुअलिटी के बारे में जरूर लिखा है। उनकी लार्ज फैमिली को पैसे का सपोर्ट देने वाली इकलौती मधुबाला जी थी और कहते हैं कि वो मशीन की तरह काम करती थी, अपना ख्याल कम रखती थी, खाना मिस करती थी और मेट्रो के ओवर क्राउडेड कंपार्टमेंट में मलाट से दादर, दादर से मलाट करती रहती थी, पर कभी भी सेट पे एब्सेंट या लेट नहीं होती थी। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें बैक टू बैक चलेंगी ना श्रेया के साथ, सो कम राइट बैक।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट। कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच,
1: अर्ज किया है। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

दोस्त बनाना अलाउड नहीं था, पार्टीज जाना अलाउड नहीं था, फिल्मों के प्रीमियर अटेंड करना अलाउड नहीं था, फिल्म फेस्टिवल्स जाना अलाउड नहीं था, पिकनिक्स, गेट टुगेदर्स, कहीं पर भी मधुबाला जी नहीं जा सकती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज उन्हीं की बातें चल रही हैं। सो उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान जी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। अगर मधुबाला जी को कुछ अलाउड था तो वो था सेट से घर और घर से सेट। इनफैक्ट वो अपनी ही फिल्मों के प्रीमियर पे नहीं जा सकती थी। कुछ किताबों ने तो ये भी लिखा है कि इन्हीं चीजों से वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हर्ट थी, और क्योंकि वो अपने अब्बा के खिलाफ नहीं जा पाती थी, वो बहुत ही मायूस और सेट पे चुप चुप रहने लगी थी। एक बार तो उन्होंने खुद कहा कि खूबसूरत होना खुशी देता है, लेकिन असली खुशी मिल जाए ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया, वापस आओ और भी बातें करेंगे उनकी।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

देव आनंद और मधुबाला जी ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने मधुबाला जी की जिंदगी थोड़ी सी बदल दी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। देव साहब और मधुबाला जी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उसी शूट पे कुछ फॉरेन के लोग देव साहब से किसी नए प्रोजेक्ट के लिए मिलने आए। उन लोगों में काफी देर तक बातचीत चलती रही और मधुबाला जी अपनी चेयर पे बैठ करके देख रही थी। जब वो लोग वहाँ से चले गए तो वो देव साहब के पास गई और उनसे पूछा, ये लोग क्या बात कर रहे थे आपसे? अब देव साहब ने या तो जानबूझ करके या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं थे मधुबाला जी को कुछ भी बताने में। तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये कह के वो वहां से चले गए, पर ये बात मधुबाला जी के दिल पे तीर की तरह लगी। घर जाते ही उन्होंने एक काम किया। What was that? अभी बताऊंगी। वापस आओ श्रेया के साथ, only on पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: ये कमलेश जी।
1: हाँ जी कौन?
2: कमलेश जी गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा। हमारी पत्नी ने लाजवंती ने वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन से पैसे दिए तुम्हें?
2: नहीं देखिए एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब उसकी बाहर की दीवार देखो उसमें पुताई होनी है।
1: देखिए
2: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
1: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए का बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो।
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई कहानी है कोई फसल है तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चंदा मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती ना मान रहे।
3: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for. Because we feel we're all family. And my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: yes,
3: with us?
1: Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
3: Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not an issue. 750 only?
3: Yes, sir, absolutely.
2: Na, 750 na, bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam gheje mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
4: Yeah, paja.
0: Aap sun rahe hain Purani Jeans. श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया और मधुबाला जी और देव साहब की फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा बता रही थी। इस फिल्म के सेट पे देव साहब से मिलने कुछ फॉरेन के लोग आए, वो कोई नया प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। उनकी ये मीटिंग काफी लंबी चली। मधुबाला जी तब तक देव साहब का वेट कर रही थी और साथ में देख रही थी कि उस एक केबिन में क्या चल रहा है। जैसे ही वो लोग वहां से गए, उन्होंने देव साहब से पूछा क्या बात हो रही थी। देव साहब या तो बहुत जल्दी में थे या फिर उन्हें बताने का मन नहीं था, तो उन्होंने कह दिया तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब ये बात मधुबाला जी को तीर की तरह लगी। उन्हें ये लगा कि क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती इसलिए देव साहब ने उनको इंसल्ट किया। फिर क्या, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करती थी वो हमेशा। जैसे ही ड्राइव करके घर वापस गई, उन्होंने एक फोन घुमाया। वो फोन था एक इंग्लिश ट्यूटर को। 17 साल की उम्र में उन्होंने फर्राटे से इंग्लिश लिखनी सीखी और इंग्लिश बोलनी सीखी। उन्हीं की ढेर सारी बातें श्रेया के साथ आज ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हॉलीवुड के एक बहुत फेमस डायरेक्टर थे फ्रैंक कैप्रा। वो 3 एकेडमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट डायरेक्टर भी जीत चुके थे। एक बार वो मुंबई आए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया को अटेंड करने। वहाँ पे जब उन्होंने मधुबाला जी को देखा तो उनकी खूबसूरती को देख करके वो इतने इम्प्रेस हुए कि बस वो चाहते थे किसी तरह मधुबाला हॉलीवुड आ जाए और वहाँ पे लॉन्च हो जाए। इसके लिए उन्होंने मधुबाला से बहुत मिन्नतें की, लेकिन भाई उनके सारे डिसीजंस तो उनके अब्बा यानी अताउल्लाह खान लेते थे। उनके अब्बा ने साफ मना कर दिया। अब वो मधुबाला को दूसरे शहर तो जाने देते नहीं थे, दूसरे देश कैसे जाने देते। सो फ्रैंक कैप्रा का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। पुरानी जींस पर मैं हूँ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
5: सुनो सुनो अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो ओ राघो बा ओ धोंडी बा आई का ओ जनरल सिंह अरे तुझी भी सुनो पापे

पुरानी जीन्स में आबू श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी वी गॉट टू हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों के लिए है जो पहली मुलाकात में तो घबराए होते ही हैं, लेकिन जब भी उनसे मिलते हैं तो वो पहली मुलाकात ही लगती है, उतनी ही रोमांटिक लगती है, उतना ही एक्साइटमेंट होता है उनसे मिलने से पहले जैसे कि पहली बार मिल रहे हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो ये गाना आज उनके लिए और ऑफ कोर्स आपके लिए। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू टुमारो। ख्याल रखो अपना, एंड या इफ यू मिस मी यू नो वेयर टू कैच मी, फेसबुक और इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव इज माई हैंडल, दैट्स आरजे SHREYA विद लव। गुड नाइट।

0: जेल में रहना मुश्किल है, लेकिन जेल से बाहर आकर अपनी कहानी एक्सप्लेन करना शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: पहले से पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो रियलिटी शो लॉकअप की बात कर रही हूँ यार। आई अग्री, उसको खत्म हुए काफी टाइम हो गया, हमें विनर भी मिल गए श्रेया कालरा के रूप में। लेकिन आज अचानक मैं इस शो की बात एक बार फिर से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने किया है मिर्ची गिरफ्तार इसी शो की अग्नि परीक्षा को पास करने वाली आकांक्षा चमोला को। आई अग्री शी वॉज नॉट द विनर ऑफ द शो, बट इन्होंने हर दूसरे इंसान का दिल जरूर जीता है। सो शो के अंदर चमोला ने अपनी शादी, डिवोर्स और सेक्सुअलिटी जैसे एक्सट्रीमली पर्सनल एस्पेक्ट्स के बारे में खुलकर बात की, एंड ऑब्वियसली उन सारी चीजों पे पब्लिक रिएक्शन भी काफी स्ट्रांग रहा। तो ऐसे में लॉकअप के बाद आकांक्षा चमोला की जिंदगी किस तरीके से बदली, उनके लाइफ में अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, वो सब जानेंगे आज मेरे शो पे। इनफैक्ट उसके अलावा भी बहुत कुछ प्लान्ड है। And to catch all of that, you'll have to stay tuned to Mirchi. मैं हूँ आपके साथ श्रुति, it's hot.

0: Milci.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Yeah, Jadeep.
2: हाँ जी.
3: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना. ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था.
2: हाँ जी.
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो.
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं.
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: मैं यही कह रहा हूँ. तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के.
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको. काम क्यों नहीं करेंगे?
3: क्या यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा.
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको.
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की.
3: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा.
2: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा.
3: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस. ये तो है भी बड़ा रिस्की. ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च जला ली, ठीक है. ये रहा थोड़ा, नहीं खुल रहा. पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा.
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना, तभी तो खुलेगा.
3: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी. अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा. चीजें बेचते हो, गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ. 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा. कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो. आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम. जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही.
2: तो कहाँ पे है तू?
3: बैंक में.
2: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
3: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर. अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने.
2: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
3: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
2: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर. तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो.
3: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ. ठीक है.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: इन बिल्लियों की कहानी बच्चों के लिए नहीं है।
1: ओटीटी एंड चिल
0: मिर्ची पे ट्यून इन। आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। और अगर आपको लगता है कि भाई बिल्लियाँ सिर्फ क्यूट होती हैं, उनका काम बस खाना सोना और एटीट्यूड दिखाना होता है, तो आपको ना रिकी जर्वेस की एली कैट्स देखनी चाहिए। ये नेटफ्लिक्स की एडल्ट एनिमेटेड कॉमेडी है जो 7 अगस्त को आई, एंड आई हैपन टू वॉच इट रिसेंटली, विच इज द स्टोरी ऑफ लंडन की गलियों में रहने वाली फेरल कैट्स, जहाँ सर्वाइवल भी है, दोस्ती भी है और फुल ऑन केओस भी है। एंड यू नो, सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन कैट्स के थ्रू लाइफ, लोनलीनेस और मोरालिटी जैसे टॉपिक्स भी बड़े फनी तरीके से सामने आते हैं। तो चलो जल्दी से ना 5 पॉइंट्स देती हूँ जिसकी वजह से आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। सबसे पहले तो रिकी जर्वेस का तड़का। इस सीरीज को उन्होंने सिर्फ क्रिएट नहीं किया, लिखा और डायरेक्ट भी किया है, जिसमें गस नाम के बिल्ले की आवाज इन्होंने ही दी है। इन शॉर्ट, ह्यूमर में उनका सिग्नेचर सार्कैज़म और इररेवरेंस बहुत अमेजिंग लगेगा। पॉइंट नंबर 2, ये क्यूट कैट्स का वर्जन नहीं है। हाँ, नाम सुन के आपको लगेगा कि भाई इनोसेंट बिल्लियां होंगी या फिर बच्चों के लिए सीरीज होगी। नहीं नहीं नहीं, ये एडल्ट एनिमेशन है जिसमें डार्क ह्यूमर, गाली गलौज और काफी अनअपोलोजेटिक कॉमेडी भी है। पॉइंट नंबर 3, हंसी के पीछे सीरियस बातें। हाँ जी, जिंदगी, मौत, अकेलापन, दोस्ती और सर्वाइवल जैसे टॉपिक्स को ये सीरीज कैट्स की दुनिया के थ्रू सरप्राइजिंगली इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाती है। पॉइंट नंबर 4, छोटी, क्विक एंड बिंज वर्दी। इस सीरीज के सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड रफली 15 से 17 मिनट का है, मतलब एक बैठक में आप पूरी सीरीज निपटा सकते हैं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 5, जो इसको देखने की सबसे बड़ी वजह है, अगर आपको कुछ अलग देखना है, अगर आप रेगुलर सिटकॉम्स और प्रेडिक्टेबल कॉमेडी से बोर हो चुके हैं, तो एली कैट्स का डार्क, अब्सर्ड और थोड़ा बिजार ह्यूमर एक रिफ्रेशिंग चेंज जरूर देगा। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। मिर्ची पे ट्यून्ड हूँ आप, और अगर आप नए हैं ऑन माय शो देन यू वुड डेफिनेटली बी लाइक, अरे ये क्या खेलने की बात कर रही है लड़की। बट एक्चुअली दिस इज दिस फिल्मी गेम जिसके थ्रू मैं आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाने की कोशिश करती हूँ। सो द थिंग इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है, देन आई गिव यू अ कॉल और फिर इस गेम की होती है शुरुआत। आज सबसे पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है अतुल जी। आर यू रेडी?
2: यस बिल्कुल
0: श्योर। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहला सवाल आपके लिए मेरा है, जो भी ला रहे हो दो लाना। राजपाल यादव का ये डायलॉग किस फिल्म में
2: है? चुपके चुपके, चुप चुप के, राइट।
0: हाँ, चुप चुप के में असली में डेफ एंड म्यूट कौन है?
2: करीना कपूर।
0: सर फिर
2: गलत। नहीं भाई, करीना कपूर, करीना कपूर।
0: करीना कपूर लॉयर किस फिल्म में बनी है?
2: ऐतराज।
0: ऐतराज में अक्षय कुमार को मोलेस्ट कौन करता है?
2: प्रियंका चोपड़ा।
0: प्रियंका चोपड़ा मॉडल किस फिल्म में बनी है?
2: फैशन।
0: फैशन में सेकेंड सुपर मॉडल कौन है?
2: कंगना रावत।
0: कंगना किस फिल्म में अकेले अपने हनीमून पे जाती हैं?
2: क्वीन। क्वीन
0: क्वीन में उनका इतना लाइफ किसने खराब कर दिया है?
2: राजकुमार राव ने।
0: वाह, राजकुमार राव की किस फिल्म में सरकटा है?
2: स्त्री टू।
0: वाह क्या बात, स्त्री टू में स्त्री कौन है?
2: श्रद्धा कपूर।
0: श्रद्धा कपूर को किस फिल्म में एक अल्कोहलिक से प्यार हो जाता है?
2: आशिकी टू।
0: कहीं पे रुक जाएंगे सर, सारा कुछ ही पता है आपको। ओ माय गॉड, आई एम डाउटिंग माय क्वेश्चंस नाउ। एनीवे, आशिकी टू में लास्ट में कौन मर जाता है?
2: आदित्य रॉय कपूर।
0: आदित्य रॉय कपूर किस फिल्म में बनी के दोस्त हैं?
2: ये जवानी है दीवानी।
0: ये जवानी है दीवानी में कौन उड़ना चाहता है, दौड़ना चाहता है लेकिन रुकना नहीं चाहता?
2: रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर के पास किस फिल्म में सुपर पावर है?
2: ब्रह्मास्त्र।
0: ब्रह्मास्त्र में शिवा से किसको पहले ही दिन प्यार हो जाता है?
2: आलिया भट्ट।
0: आलिया भट्ट एज अ हॉकी प्लेयर किस फिल्म में है?
2: आई थिंक उड़ता पंजाब। नहीं, शायद मेबी उड़ता पंजाब।
0: यू आर राइट। उड़ता पंजाब में नशेड़ी आर्टिस्ट कौन है?
2: नशेड़ी आर्टिस्ट, सॉरी श्रुति ये मुझे नहीं पता, दिस इज वेरी टफ। आई थिंक दिलजीत दोसांझ का ब्रदर है, लेकिन उसका नाम नहीं पता मुझे।
0: नहीं सर, यहाँ आपने गलती कर दी, बट कोई बात नहीं, इस लेवल तक इस गेम को पहुंचाना ऐसे बाएं हाथ का खेल होता नहीं। बट यस, यू आर डेफिनेटली यार।
1: मिर्ची फिल्म जी।
0: तो भाई निखिल जी जिस पॉइंट पे अटके हैं उसके आगे का गेम कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: Radio Mirchi, it's hot.

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप एंड इट्स टाइम टू फाइंड द सेकंड मिर्ची फिल्म ची ऑफ द डे। सो द थिंग इज कि मैं आपको कॉल करके इस फिल्मी गेम की शुरुआत करती हूँ और आज हमने अतुल जी के साथ इस गेम को शुरू किया, हु गॉट स्टक एट अ पॉइंट। लेकिन उसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ है हिमांशु जी। आर यू रेडी सर?
3: यस आई एम।
0: ऑल राइट, उड़ता पंजाब में नशेड़ी आर्टिस्ट कौन है?
3: शाहिद कपूर।
0: बहुत बढ़िया। शाहिद कपूर की फिल्म जो एक ड्रिंक के नाम पे है,
3: कॉकटेल टू।
0: कॉकटेल टू में मामा माशू का कौन है?
3: कृति सैनन।
0: यस इट इज कृति सैनन। सरोगेट मदर किस फिल्म में बनी है?
3: मिमी।
0: आपकी जो मोहतरमा बैठ के आपको प्रॉम्प्ट्स दे रही है, आई लाइक इट। मिमी में कृति को सरोगेसी के लिए कौन मनाता है?
3: पंकज त्रिपाठी।
0: पंकज त्रिपाठी किस फिल्म में इंडियन क्रिकेट टीम के मैनेजर बने हैं?
3: 83।
0: क्या बात है। 83 में कपिल देव का रोल किसने प्ले किया है?
3: रणवीर सिंह।
0: बहुत बढ़िया। रणवीर सिंह ब्रेड पकौड़ी की कसम किस फिल्म में खाते हैं?
3: शादी मुबारक।
0: शादी मुबारक उस मूवी का पहले नाम होने वाला था लेकिन बाद में उसको चेंज किया गया था। इट रिलीज विद अ डिफरेंट नेम। बहुत ही बढ़िया। एंड इतना अच्छा जो गेम आपने अकेले नहीं, आपकी बेटर हाफ की मदद के साथ जो कंप्लीट किया है, उसके लिए आप दोनों को ये टैग तो जरूर देना चाहूंगी।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द गेम। आई जस्ट होप कि आगे भी इसी तरीके से हम कनेक्ट करते रहें। वेल, आज के हमारे दो मिर्ची फिल्मची हमें मिल चुके हैं, लेकिन अगर आप भी इस लिस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कल इस शो पे वापस ट्यून इन करना। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड। इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello. Anshika? ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से, मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
2: हाँ जी,
3: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
2: जी बताइए,
4: इसका नाम क्या है?
3: संतोष। संतोष
2: संतोष
3: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
2: नहीं, कोई बात नहीं।
3: तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
2: संतोष क्या करता है? व्हाट डू यू
3: I am entrepreneur. दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: ये पटा
7: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
5: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: From a damsel in distress to a powerful queen.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइनों का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन होता है, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि अक्सर हमने हमारी हीरोइंस को प्यार करते, रोते और हीरो का इंतजार करते तो बहुत देखा है। लेकिन जब ये हीरोइंस खुद सवाल करती हैं, सिस्टम से लड़ती हैं और जरूरत पड़ने पर रिवेंज भी लेती हैं, तब कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और आज मेरे पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं ऐसी ही कुछ पांच फेमिनिस्ट फिल्मों की बात कर रही हूँ जिसमें द फीमेल प्रोटैगनिस्ट टुक द सेंटर स्टेज। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी सिस्टम इग्नाइट। अब नंबर दो पे बात करते हैं NH10 के बारे में, जो रिलीज हुई थी साल 2015 में। नवदीप सिंह की हार्ड हिटिंग थ्रिलर स्टारिंग अनुष्का शर्मा एंड नील भूपलम। माइंड यू, इस फिल्म को अनुष्का ने प्रोड्यूस भी किया था, दस मेकिंग हर प्रोडक्शन डेब्यू एज वेल। कहानी एक रोड ट्रिप की जो अचानक से टेरिफाइंग नाइटमेयर बन जाता है। NH10 में अनुष्का शर्मा एज मीरा एक वायलेंट इंसिडेंट के बाद सर्वाइवल के लिए फाइट करती हैं। ये फिल्म ऑनर किलिंग, पेट्रियार्की और रूरल पावर स्ट्रक्चर्स को ब्रूटली एक्सप्लोर करती है, जहां मीरा का कैरेक्टर विक्टिम बनके रुकता नहीं बट फाइट बैक करता है। चलो लिस्ट में नंबर तीन पे अब बात करना चाहूंगी अबाउट द फिल्म मॉम, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय रवि उद्यावर, विच इज अ रिवेंज थ्रिलर स्टारिंग श्रीदेवी मैम, सजल अली, अक्षय खन्ना एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी। माइंड यू, ये फिल्म श्रीदेवी मैम की 300th फिल्म थी और इसी के साथ उन्होंने अपने सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत की थी इन दी इंडस्ट्री। कहानी का बैकड्रॉप फेल जस्टिस सिस्टम को दिखाता है, जब इन सारी चीजों से परेशान होके एक माँ खुद जस्टिस बन जाती है। फिल्म मॉम में श्रीदेवी अपनी स्टेप डॉटर के सेक्सुअल असॉल्ट के बाद उन गुनहगारों को सजा दिलाने के मिशन पर निकलती हैं। इन शॉर्ट, फिल्म का कोर है अ मदर्स लव, रेज एंड फाइट फॉर जस्टिस। तो बाबू मोशाय, अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी, देन डेफिनेटली यू शुड पुट इट इन योर वॉच लिस्ट। एंड टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, अपने आसपास के मर्दों को स्पेसिफिकली ये फिल्में जरूर दिखाएं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और अब से कुछ ही देर में ऐसी ही दो और फिल्मों की बातें होंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: जब एक औरत के साथ इनजस्टिस हो तो उसको क्या करना चाहिए?
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना चाहिए, उसको एक प्रॉपर रूट लेना चाहिए टू गेट जस्टिस। बट अगर जस्टिस सिस्टम ही उसको फेल करती जाए तो फिर क्या? क्या वो चुप रहेगी, सिस्टम का वेट करेगी, या खुद अपनी जस्टिस की फाइट लड़ेगी? वेल, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने इस सवाल का जवाब हमें कई पावरफुल थ्रिलर्स के जरिए दिया है। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही फेमिनिस्ट फिल्मों की बात कर रही हूँ जहाँ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स टुक द सेंटर स्टेज। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट सिस्टम मिडनाइट, उसके बाद NH10, देन मॉम, और अब बारी है टू टॉक अबाउट द मूवी बुलबुल। साल 2020 में अन्विता द डायरेक्टोरियल ये गॉथिक पीरियड हॉरर फिल्म आई, स्टारिंग तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी एंड राहुल बोस एज लीड्स। सेट इन द 1880s बंगाल, बुलबुल नाम की एक चाइल्ड ब्राइड एक ओप्रेसिव वर्ल्ड में ग्रो करती है और इवेंचुअली अपनी एजेंसी और पावर रिक्लेम करती है। वैसे फिल्म की डायरेक्टर साहिबा ने इसको एक फेमिनिस्ट फेरी टेल भी कहा था, जहां सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के थ्रू एक औरत के पेन और रेश को एक्सप्लोर किया गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब नंबर 5 पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म नो वन किल्ड जेसिका, जो साल 2011 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय राजकुमार गुप्ता। इसमें विद्या बालन, रानी मुखर्जी और मायरा कर्ण लीड रोल्स में थे। सो एक मर्डर हुआ जिसके विटनेसेस थे, एविडेंस भी था, फिर भी जस्टिस इतना डिफिकल्ट क्यों था? वेल, नो वन किल्ड जेसिका जेसिका लाल मर्डर केस से इंस्पायर्ड क्राइम थ्रिलर है, जहां विद्या बालन प्लेज जेसिका सिस्टर सबरीना लाल, वहीं रानी मुखर्जी ने जर्नलिस्ट मीरा गेटी का रोल प्ले किया है। फिल्म में मीडिया पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और जस्टिस सिस्टम के फेलियर्स को हाईलाइट किया गया है, एंड इट शोज हाउ अ वुमन्स फाइट कैन बिकम अ पब्लिक मूवमेंट। तो मेरे फेमिनिस्ट फिल्मों वाली पांच का पंच की लिस्ट में इतना ही। बाकी आप कोई ऐसी ही फिल्म इस लिस्ट में ऐड करना चाहें, देन फील फ्री टू डू दैट मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: भाई मैं तो नींद में भी इस इंसान की मूवीज देख सकती हूँ।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ये बात और है कि जिस मूवी की बात अभी करने वाली हूँ वो थिएटर में आई थी एंड आई मिस्ड इट यार, बट आई एम सो हैप्पी दैट फाइनली इट इज कमिंग ऑन द ओटीटी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट मी टेल यू, मैं बात कर रही हूँ अनुराग कश्यप डायरेक्टोरियल फिल्म बंदर के बारे में, विच स्टार्स बॉबी देओल एज द लीड। वेल उनके अलावा मूवी में सानिया मल्होत्रा, सपना पाब्बी, सबा आजाद, इंद्रजीत सुकुमारन, राजबी शेट्टी और जितेंद्र जोशी जैसे एक्टर्स भी है। माइंड यू ये फिल्म जो है वो सबसे पहले 2025 में रिलीज हुई थी। हाँ जी, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में ग्लोबली इस फिल्म का प्रीमियर किया गया था। फिर किसी न किसी रीजन से इंडिया में ये फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही थी, बट फाइनली इट रिलीज इन द थिएटर्स ऑन द 5th of June 2026, विच आई डेफिनेटली मिस्ड। बट अब फाइनली अनुराग कश्यप की ये फिल्म जो है वो Z5 पे आ रही है ऑन द 28th of August। तो अगर आपको भी अनुराग कश्यप की फिल्म मेकिंग पसंद है और आप लॉर्ड बॉबी के भी फैन हैं, इनफैक्ट उनके अलावा जितने सितारों के नाम मैंने बोले अगर उनका भी काम आपको पसंद आता है, देन डेफिनेटली आपको इसे अपने वॉच लिस्ट में डालना चाहिए। बाकी जब मैं ये फिल्म देखूंगी ना उसके बाद आपको जरूर बताऊंगी कि कैसी लगी। फिलहाल के लिए एंजॉय दी अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

दोस्तों मंडे का तो अपना स्टारडम होता है और फ्राइडे की अपनी अलग फैन फॉलोइंग। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी। लेकिन हमारा जो मंगलवार है वो बॉलीवुड फिल्म के उस सीन की तरह होता है जहाँ कहानी क्वाइटली आगे बढ़ रही होती है। हीरो भी आ चुका होता है, हीरोइन से मुलाकात हो चुकी होती है, विलन का भी हिंट मिल ही गया होता है और ऑडियंस बस ये देखना चाहती है कि अब आगे क्या होगा। बिल्कुल हमारे वीक की तरह मंडे की एंट्री तो हो गई, अब पिक्चर अपनी रिदम पकड़ चुकी है और वैसे भी ये जो हफ्ता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो एक्साइटमेंट का बैकग्राउंड म्यूजिक ऑलरेडी बज रहा है। तो चलिए इस ट्यूसडे की स्टोरी को थोड़ा फिल्मी बनाते हैं, मूड हल्का रखते हैं, ट्रैफिक को थोड़ा बैकग्राउंड आर्टिस्ट बना देते हैं और बॉलीवुड का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और मुझे बताइए दोस्तों, अगर आपके इस हफ्ते का जॉनर चूज करना हो तो वो बॉलीवुड का कौन सा जॉनर होगा? रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर या फुल ऑन फैमिली ड्रामा? टेल मी ऑन इंस्टेट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHY। और चलिए इस ट्यूसडे यानी मंगलवार की फिल्म का अगला सीन शुरू करते हैं इस जबरदस्त बॉलीवुड गाने के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na wirt bala burka. Milci burka.
1: हेलो
2: हेलो, ये कमलेश जी?
1: हाँ जी, कौन?
2: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन सा पैसा चाहिए तुम्हें?
2: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
1: अरे, तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं।
2: देखिए, मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
1: अरे, तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं देना कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
3: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: yes,
3: with us?
1: Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
3: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not an issue. 750 only?
3: Yes, sir, absolutely.
2: Nah, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aayi. Lajwanti ki ekdam ghejne mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's

बॉलीवुड म्यूजिक का डिबेट कभी खत्म ही नहीं होता। ओल्ड इज गोल्ड या न्यू इज बोल्ड। शाम शादा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और पुराने गाने ना यार टाइम लेते थे दिल में बसने के लिए, लेकिन नए गाने इंस्टेंट वाइब देते हैं। पहले लिरिक्स डायरी जैसे लगते थे, लेकिन आज बीट्स प्लेलिस्ट फ्रेंडली हो गए। दोनों का ना अपना ही अलग चार्म है। एक मेमोरी बनाता है, लेकिन दूसरा मोमेंट बनाता है। और शायद इसी बैलेंस में बॉलीवुड म्यूजिक सरवाइव कर रहा है। वैसे आप भी बताओ दोस्तों, आपका मूड आज किस तरफ है, रेट्रो या रीसेंट? डीएम मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। फिलहाल मेरा मूड क्या कहता है वो तो आप अभी सुनेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Breaking news, Mirchi banane wala hai hit gana. Hit.

पता है सबसे फनी मोमेंट क्या होता है? जब हम किसी छोटी सी बात को फुल टेंशन बना देते हैं और फिर याद आता है कि यार बचपन में भी तो ऐसा ही होता था। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और याद है जब स्कूल में होमवर्क भूल जाते थे और लगता था कि बस अब दुनिया खत्म, अब मार पड़ेगी, मम्मी को कंप्लेन जाएगी। लेकिन फिर कभी कभार कोई अच्छी टीचर मिल जाती थी और वो कह देती कि ठीक है कल लेकर आना, और लाइफ नॉर्मल लग जाती थी। आज भी ना वही सीन है, सुबह जो स्ट्रेस माउंटेन लगता है शाम तक स्पीड ब्रेकर बन ही जाता है। और शायद जिंदगी का यही मैजिक है, एक अलग ही पर्सपेक्टिव दे ही जाता है। तो बताओ दोस्तों, आज का कौन सा स्ट्रेस ऐसा था जो अब बिल्कुल बचपन वाली बात लग रही है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। ये थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ी हंसी, दोनों साथ में मिलके बांटेंगे। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: तो फिर जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

यार जब जब श्रेया घोषाल और सोनू निगम साथ आया है ना, तब तब धमाका ही हुआ है म्यूजिक में। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसे कितने गाने हैं जो श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने साथ में गाए हैं, फिर चाहे वो यार एक दूसरे के गानों में एकदम छोटा सा पार्ट ही गाना ही क्यों ना हो, बट एवरी सॉन्ग हैज़ बिन मैजिकल। तो चलिए बात करते हैं आज कुछ अमेजिंग गानों के बारे में जो इन दोनों ने गाए हैं। एंड द फर्स्ट वन इन माई लिस्ट इज यार दिल डूबा दिल डूबा, जो कि एक मतलब आई वोंट से इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, बट इट्स दैट वन अमेजिंग सॉन्ग जिसके मतलब बस मन करता है कि गाने को सुनते ही जाओ सुनते ही जाओ। एंड यू कैन नॉट स्टॉप ग्रूविंग ऑन दिस सॉन्ग, स्पेशली अक्षय कुमार का जो हुक स्टेप है दिल डूबा गाने का। तो चलिए आज यही गाना प्ले करते हैं, एंड आई एम गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट श्रेया एंड सोनू सॉन्ग। बट आप ही मुझे बता सकते हो कि आपका इस डुएट का फेवरेट गाना कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। तब तक के लिए सुनते हैं दिल डूबा राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

श्रेया घोषाल और सोनू निगम जैसी सुरीली आवाज जब साथ में आती है तो म्यूजिक रोमांटिक मास्टरपीस तो बनेगा ही। शाम शानदार लाइक सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और बातें हो रही है कि यार श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने जब भी साथ में गाना गाया है तो खूबसूरती वाले गाने, मतलब ऐसे गाने बजे हैं, ऐसे गाने हमको सुनने मिले हैं जो यार मतलब उनको कैटेगराइज ही मास्टरपीस में कर देना चाहिए। तो एक जो रोमांटिक मेलोडी है जो इन दोनों ने साथ में गाई है, दैट इज़ फ्रॉम द मूवी कुर्बान, अगेन शुक्र अल्लाह इज़ द सॉन्ग। यार इतना ब्यूटीफुल गाना, इतना ब्यूटीफुल गाना है, एंड यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन एनी अदर सिंगर सिंगिंग दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। स्पेशली दोनों की जो जुगलबंदी इस गाने में, दैट इज़ एब्सोल्युटली मार्वेलस। तो चलिए सुनते हैं इन दोनों का शुक्र अल्लाह ये गाना फ्रॉम द मूवी कुर्बान। एंड आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट वन फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स which is sung by Shreya Ghoshal and Sonu Nigam. Tell me on RJ Mirchi Siddhi, SIDDHI on Instagram. Adab tak ke liye, shukrullah, right here on Mirchi. It's hot.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La birba la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Jadeep.
2: Hanji.
3: भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना, ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
2: हाँ जी।
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो?
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं,
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: नहीं है आपको? मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेगा जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं,
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेंगे?
3: क्या यूज करूं, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा।
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको।
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की।
3: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
2: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा।
3: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा, नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा।
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना, तभी तो खुलेगा।
3: हथौड़ा जोर से मार दो, सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी, अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो, गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही।
2: तो कहाँ पे है तू?
3: बैंक में।
2: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
3: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर
2: है?
3: अपना हथौड़ा ना चलने पे अब सारा ने।
2: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
3: खोलूंगा ना, खुली नहीं रहा, क्या करूँ आप?
2: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर, तू फोन रख भाई, तू मेरे पास कॉल मत करियो,
3: ठीक है? मैं वापस कर रहा हूँ, ठीक है? मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

लगता है ना जब हमारे लिए कोई अबाव एंड बियॉन्ड जाए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए कि हम जिम ज्वाइन करें तो यार ट्रेनर सिर्फ एक्सरसाइज ही ना बताए बल्कि पोस्चर भी करेक्ट करे, प्रोग्रेस भी चेक करे और इंजरी होने से पहले ही रोक ले। यार कितना अच्छा लगेगा कि ऐसे अबाव एंड बियॉन्ड सभी अपने काम में जाए। क्योंकि यार बड़े बड़े डिसीजन जैसे कि होम बाइंग भी एक ऐसी ही चीज़ होती है जहाँ सिर्फ लोन अप्रूवल नहीं होता, राइट गाइडेंस, राइट प्लानिंग और वो एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होता है जो हमें लॉन्ग टर्म में एक सही डिसीजन लेने में मदद करें। और इसी एक्स्ट्रा माइल के बारे में आज बात करने वाले हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मार्केट। ओवर टू यू बीश।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Tera kya hoga, Kalia?
4: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
3: Ab Mirchi kha.
5: Radio Mirchi, it's hot.
6: Ishq ji.

एक दूसरे के गाने में एक छोटा सा कैमियो भी ना मैजिकल बन जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है श्रेया घोषाल और सोनू निगम के बारे में। वैसे तो यार ये जो गाना है जिसके बारे में आपको बताने वाली हूँ, दैट सॉन्ग इज एंटायरली संग बाय सोनू निगम, बट एक छोटा सा पार्ट इसमें श्रेया घोषाल का है। एंड वी जस्ट कैन नॉट इमेजिन एनीबडी एल्स सिंगिंग दैट वन स्मॉल पार्ट, क्योंकि यार इन दोनों का जो आवाज़ है वो, मतलब जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस इसको मिल जाता है, इट क्रिएट्स अ रोमांटिक मेलोडी। मतलब और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। यस, दैट सॉन्ग इज़ फ्रॉम ओम शांति ओम मैं अगर कहूँ। तो चलिए सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में मैं अगर कहूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी इन दोनों का कोई गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। तब तक के लिए ओम शांति ओम का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: की जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, कबड़क कबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

सबको पता होता है कि कुछ ठंडा और मजेदार बनने वाला है। थोड़ी ही देर में ट्रे में आता है लंबा सा ग्लास, थिक क्रीमी मैंगो लस्सी से भरा हुआ। ऊपर हल्की सी मलाई, कभी थोड़े पिस्ता, कभी थोड़ी इलायची। और पहले सिप के बाद बस एक ही ख्याल है, काश ग्लास थोड़ा और बड़ा होता। और घर में अगर चार लोग हो ना, तो ब्लेंडर एक बार नहीं, चार चार बार चलता है, क्योंकि हर कोई कहता है यार मेरे लिए भी बना दो। उसकी डिमांड तुरंत शुरू हो जाती है। और शायद इसीलिए मैंगो लस्सी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, समर का एक रिचुअल है। और उसी रिच आम का स्वाद लाया है दीप अल्फोंसो मैंगो पल्प। तो आज ही ले आइए अपने नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तो चलिए, अब गर्मी का मूड थोड़ा ठंडा हो चुका हो, तो बॉलीवुड के सुरों के साथ शाम को भी रिफ्रेशिंग बनाते हैं ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

शाम शाम का लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है बॉलीवुड के म्यूजिक इंडस्ट्री की धमाकेदार जोड़ी की। जी हां, श्रेया घोषाल और सोनू निगम इज वन दैट फेवरेट जोड़ी ऑफ आर्स, ये जिनके गाने ना, जो डुएट सॉन्ग्स है स्पेशली, बस सुनने का ही मन करता रहता है। एंड वन रिक्वेस्ट जो आप ही से आई है, इट्स फ्रॉम प्रनीता, और प्रनीता रहती है एडिसन में, एंड शी हैज़ रिक्वेस्टेड दिस सॉन्ग पीयू बोले फ्रॉम द मूवी परिणीता, जो 2005 में रिलीज हुई थी। और प्रणीता को ये मूवी इसलिए पसंद है क्योंकि परिणीता साउंड्स वेरी वेरी क्लोज टू प्रणीता, और उसको लगता था कि ये परिणीता है ही नहीं, ये प्रणीता नाम की ही मूवी है, इसलिए ये जो गाना है पीयू बोले इस मूवी का, इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे एक खास बात इस गाने की ये है कि ये गाना जब शूट किया गया था तो एक सिंगल शॉट में पूरा गाना शूट किया गया था। जी हाँ, कोलकाता स्टाइल हवेली सेट थी जिसमें विद्या बालन थी, और उनका जो लुक था मीना कुमारी से इंस्पायर्ड था। सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग कंपोज्ड बाय शंतनु मोइत्रा एंड संग बाय नन अदर देन श्रेया घोषाल एंड सोनू निगम। तो चलिए सुनते हैं पीयू बोले फ्रॉम परिणीता। और दोस्तों, अगर आपके भी कोई फेवरेट सॉन्ग्स है फ्रॉम दिस धमाकेदार जोड़ी श्रेया घोषाल एंड सोनू निगम, टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए परिणीता का पीयू बोली, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskaba la puskaba na sakaba na. Murga, murga. La vizba la murga. Mirci, murga.
2: Hello?
3: Hello, Anshika? ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से. मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
2: हाँ जी,
3: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए.
2: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
3: संतोष. संतोष
2: संतोष
3: संतोष. सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
2: नहीं, कोई बात नहीं.
3: तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है.
2: संतोष क्या करते हो? व्हाट डू
3: आई एम एंट्रोपोनर नहीं दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है. अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च. गॉड ब्लेस यू. आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी. हंस क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

वो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा है वो मिलके ही रहता है, लेकिन कभी कभी किस्मत को भी थोड़ा सा हिंट देना पड़ता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी एमी विर्क का किस्मत ये गाना सुनती हूँ ना, एक पूरी कहानी आंखों के सामने आ जाती है। वो प्यार, वो इंतजार और वो थोड़ी सी कसक, और एमी विर्क की वो आवाज़ जो इमोशन को सीधा दिल तक पहुंचाती है। लेकिन इस बार एमी विर्क की कहानी सिर्फ स्क्रीन या प्लेलिस्ट तक नहीं रुकने वाली, क्योंकि शुक्रवार अगस्त 28 को एमी विर्क अपने यूनिटी टूर के साथ न्यू जर्सी आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एट द वंडरफुल वेन्यू ऑफ कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवेंट सेंटर इन कार्टरेट न्यू जर्सी इज गोइंग टू बी एन अमित जेटली ऑफ सा यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन। तो इवेंट का कैनवस बहुत ही ग्रैंड रहने वाला है, तो आज ही अपने टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम sulekha.com या फिर saiusainc.com। और अब बारी आती है आपकी किस्मत की, क्योंकि मिर्ची लिसनर्स के पास कॉन्सर्ट की टिकट्स जीतने का मौका है। तो मुझे बताइए कि अगर एमी विर्क के कॉन्सर्ट में आपकी किस्मत खुल जाए तो वो कौन सा गाना होगा जो आप सबसे पहले लाइव सुनना चाहोगे। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, टाइप कीजिए एमी विर्क और अपना जवाब, और कॉन्टेस्ट में एंटर हो जाओ, क्योंकि हो सकता है अगला डीएम मेरा हो और मैं कहूं कि बॉस किस्मत में एमी विर्क लाइव शो लिखा है। तो चलिए, अब किस्मत की बात हो ही रही है तो अगला गाना भी वही है, एमी विर्क का किस्मत। ऑन योर मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Bala Banquet Edison.

दोस्तों, कभी कभी कुछ गाने ना उसके म्यूजिक की वजह से पॉपुलर हो जाते हैं, कभी कभी कुछ गाने उसके सिंगर्स की वजह से, और कभी कभी कुछ उसके पिक्चराइजेशन की वजह से। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज बातें हो रही है बॉलीवुड के म्यूजिक डुओ, वन ऑफ द मोस्ट हिट म्यूजिक डुओ श्रेया घोषाल और सोनू निगम के गानों के बारे में। और एक बहुत ही खूबसूरत गाने की रिक्वेस्ट आई है, अमित जी जो कि रहते हैं एडिसन में, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ये बहुत ही खूबसूरत गाना फ्रॉम द मूवी वजीर तेरे बिन। जी हाँ, ये गाना फिर एक बार शंतनु मोइत्रा ने कंपोज किया है, जिन्होंने परिणीता वाला गाना भी कंपोज किया था, पीयू बोले। और यार ये जो गाना है इसमें मतलब म्यूजिक तो अमेजिंग है ही, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ भी अमेजिंग है, लेकिन यार जिस तरह से ये गाना फरमाया गया है ना, मतलब हर एक जो इस गाने का फ्रेम है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सॉफ्ट टोन्ड, वॉर्म और एक पोएटिक फील देता है, जैसे कि मान लो किसी मेमोरी में से निकाला गया हो ये पूरा गाना, और हर एक फ्रेम इसका एक पेंटिंग जैसा दिखता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब है इस गाने का। तेरे बिन सुनते हैं अमित जी की रिक्वेस्ट पर फ्रॉम द मूवी वजीर, यार ऑफ कोर्स सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों, आपका भी कोई फेवरेट गाना है सोनू निगम और श्रेया घोषाल का तो मुझे जल्दी से बताइए, टेल मी ऑन RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI जो है मेरा इंस्टाग्राम ID। और फिलहाल सुनते हैं वजीर का ये खूबसूरत गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

शाम शाम वाले सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका वंस अगेन मंडे की इस खूबसूरत शाम में, जहां यार रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट आ रहे हैं सोनू और श्रेया के धमाकेदार गानों की। लेकिन यार एक जो रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, दैट इज़ नॉट जस्ट सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल्स जस्ट देयर डू इट, बट यार इसमें ऑलमोस्ट 6 सिंगर्स हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स। क्योंकि ये गाना पहले तो यार इश्क पे बनाया गया है, 6 सिंगर्स इस गाने में हैं और ये जो गाना है बहुत ही ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन है। मतलब ना सिर्फ ये ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन है, इस कॉम्पोजिशन को एक कवाली स्टाइल में गाया गया है बट एक मॉडर्न ट्विस्ट भी दिया गया। मतलब सोचिए अगर 6 फ्लेवर्स एक ही बिरयानी में आ जाए तो हो क्या मज़ा आ जाए। तो वैसा ही एक ही गाने में 6 सिंगर, जैसे कि सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला, शान, साधना सरगम, सुचेता भट्टाचार्य, इतने सारे सिंगर्स एक साथ थे, प्लस एडिशन शंकर महादेवन भी थे एज पार्ट ऑफ कोरस जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है। जी हाँ, बात हो रही है सलामी इश्क गाने की, उसका टाइटल ट्रैक की बात हो रही है जो मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, क्योंकि ये गाना रिक्वेस्ट किया है कृति ने, हु इज़ फ्रॉम जर्सी सिटी। तो चलिए कृति के लिए प्ले करते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल का और भी बहुत सारे सिंगर्स का ये जो ब्यूटिफुल मेलोडियस सॉन्ग है सलामे इश्क, टाइटल ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट सोनू एंड श्रेया सॉन्ग, टेल मी ऑन इंस्टा एट आरजी मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सलामे इश्क का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है धूम थ्री के मलंग गाने से। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर कैटरीना कैफ का एरियल एक्ट यानी जितने भी सर्कस स्टाइल परफॉर्मेंसेस थे, फ्लिप्स थे, बैलेंस थे, ग्रेस था, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन पर्दे के पीछे इस गाने के लिए ना एक फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि कैटरीना ने इस गाने के लिए प्रोफेशनल एक्रोबैटिक ट्रेनिंग ली थी, बॉडी कंडीशनिंग की थी और मंथ्स तक रिहर्सल किए थे, क्योंकि ये कोई रेगुलर बॉलीवुड डांस नहीं था। इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ एक साथ चाहिए था। और शूट के टाइम पर भी ना सेफ्टी और प्रिसीजन का पूरा ध्यान रखा गया था। तो सोचिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस हम बस 3 मिनट के लिए पर्दे पर देखते हैं, उसके पीछे महीनों की जिम और ट्रेनिंग छुपी होती है। तो इसका मतलब तो साफ है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सिर्फ डांस ही नहीं, फुल एथलीट बनना पड़ता है। और शायद इसीलिए कहते हैं बॉलीवुड का डांस नहीं है आसान। तो चलिए सुनते हैं धूम 3 का मलंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से गाने के पर्दे के पीछे के किस्से आपको सुनने हैं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Murga, murga. La viva la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Yeah, Jadeep.
2: हाँ जी.
3: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना. ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था.
2: हाँ जी.
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो.
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं.
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: मैं यही कह रहा हूँ. तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के.
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको. काम क्यों नहीं करेंगे?
3: क्या यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा.
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको.
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की.
3: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा.
2: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा.
3: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस. ये तो है भी बड़ा रिस्की. ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च जला ली, ठीक है. ये रहा थोड़ा, नहीं खुल रहा. पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा.
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना, तभी तो खुलेगा.
3: हथौड़ा जोर से मार दो, सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी. अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा. चीजें बेचते हो, गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ. 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा. कि सर ले जाओ, हमारा यकीन करो. आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम. जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही.
2: तो कहाँ पे है तू?
3: बैंक में.
2: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
3: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर. अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने.
2: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
3: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
2: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू तू जो कर रहा है कर. तू तू तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो.
3: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ. ठीक है.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

नोटिस किया है कि हर दिन ना अर्जेंसी नहीं होती। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज का दिन ना उन्हीं में से है जहां सब कुछ अभी नहीं थोड़ी देर बाद कैटेगरी में लगता है और ये परफेक्टली ओके है क्योंकि आज हर किसी को ना हीरो बनने की जरूरत नहीं, कभी कभार बस प्रेजेंट रहना ही काफी होता है। तो अगर आज आपने भी अपने आप को थोड़ा स्लो चलने दिया है तो समझो कि आपने भी एक बहुत ही सही डिसीजन लिया है। तो आप भी जरूर बताना कि आज आपने किस चीज को कॉन्शियसली स्लो रखा है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार मैंने अपनी प्लेलिस्ट को थोड़ा सा धीमा कर दिया है क्योंकि ये जो शाम है वो बहुत ही सुहानी है, तो यार हर बार हाई बीट्स अर्जेंट बीट्स की जरूरत नहीं है। तो चलिए ये धीमा सा गाना सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

कभी कभी कोई गाना ऐसा होता है जो बजते ही शाम का मूड चेंज कर देता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी, और 2000 एरा का एक ऐसा ही टाइमलेस ट्रैक है कल हो ना हो। यार जैसे ही उसका सॉफ्ट पियानो इंट्रो शुरू होता है ना, सडनली सब कुछ थोड़ा सा स्लो लगने लगता है। ड्राइव हो, चाय हो, या बस विंडोज से बाहर देखना, यार इस गाने की खूबसूरती ही ये है कि ये लाउड नहीं है पर इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा डीप है। सिंपल सी मेलोडी है, सोलफुल सी आवाज है, वो भी सोनू निगम की, और वो लाइन जो याद दिलाती है कि हर दिन को ना थोड़ा और अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसीलिए जब भी ये ट्रैक रेडियो पे आता है ना, लोग ऑटोमेटिकली वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा ही लेते हैं, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो ना मूड बन जाते हैं। तो दोस्तों आप भी बताना कि कौन सा ऐसा बॉलीवुड का गाना है जो सुनते ही आपको भी वो पॉज और फील मोमेंट मिलता है। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI, और तब तक के लिए आपके लिए कल हो ना हो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi SIDDHI। और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: पता है, रियलाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, और ये मुझे बहुत साल लगे टू फिगर आउट कि जब आपको मोहब्बत हो जाती है ना, तो आपको सब कुछ आउटसोर्स करना पड़ता है. खाना आपसे बनता नहीं, काम आपसे होता नहीं, दिमाग आपका चलता नहीं है, तो आपको मम्मी को कहना पड़ता है कि भाई कॉफी बना के रख देना, क्योंकि कॉफी बनाने का भी दिमाग नहीं चल रहा है. आपको जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने दोस्तों से पूछने पड़ते हैं कि यार ये जो बंदा है, ही इज टेलिंग मी दैट हमें एक वेकेशन कर लेनी चाहिए, इज इट टू सून टू गो आउट ऑन अ वेकेशन. आपका दिमाग नहीं चल रहा क्योंकि यू आर इन लव, और जब आप प्यार में होते हो तो के बाकी दोस्तों को आपके लिए दिल का, दिमाग का, पेट का काम करना पड़ता है. बेसिकली आई हैव रियलाइज कि जब मिर्जा गालिब ने कहा था, आई थिंक कि इश्क ने गालिब निकम्मा, हाँ ऑब्वियसली मिर्जा गालिब ने ही कहा था कि इश्क ने गालिब निकम्मा बना दिया, नहीं तो आदमी तो हम भी थे काम के. और मैं जिंदगी में इतनी बार निकम्मी बनी हूँ कि ये मेरा प्रोफेशन बन गया है. अब मैं एक निकम्मी आशिक / आरजे हु गिव्स एडवाइस अबाउट लव हूँ. बट दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज कि आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपको प्यार हो गया है और अब आप किसी लायक रहे ही नहीं हो. कहाँ आप घर के चश्मों चिराग सबसे लायक इंसान थे, और अब कहाँ जमीन पे पड़े नालायक आशिक हो. अगर है ऐसी बात, व्हाई डोंट यू हिट मी अप, वी विल कंपेयर नोट्स. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के